0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
2: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
2: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
2: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
3: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
4: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
5: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.
6: Hits.
7: Music never sounded better.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are saying. We are playing.
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM.
15: This is a public service announcement.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा माहरीन दी मदद ली सी।

0: वेस्टफोर्ड नॉटिंघम।
1: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
0: लो जी, ओवी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने। मुफ्ता मशवरा लो जी।
2: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Centre at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: This is a public service announcement.
4: Everybody. The station.
5: That plays
6: foot tapping music.
7: Hazza 97.1 FM.
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैप।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
8: फजान 97.1 FM,
7: आई लव इट।

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा

0: यार घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
0: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
5: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
6: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: फजान 97.1 FM,
1: आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll

0: लेबल है।
1: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी, वाइब भी।
6: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968 04

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन।
6: इट्स कमर्शियल टाइम।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
14: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
15: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
14: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
15: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
14: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
16: You are listening 97.1 FM.
17: You are staying. We are playing
18: Fazan 97.1 FM.
19: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
20: 97.1 FM।
16: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor.

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential.

0: फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
1: You are listening 97.1 FM.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान नासिर खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम स्वागतम है जनाब उन समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। हाँ, अरे ऐप से याद है आपको तो रिमाइंड करवाते चलें कि ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे। आप जाएंगे गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे सर्च बार में, क्या सर्च बार में आपने लिखना है, टाइप करना है 97.1 एफएम ऑफिशियल, नहीं रेडियो 97.1 एफएम ऑफिशियल, और फिर जनाब एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर में लिखा हुआ फजा आपके सामने आएगा। आप उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए, और जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही वास्ते रहेगी आपकी समातों की नजर। तो जनाब बात हम कुछ भी नहीं थे कर रहे, ट्रैक्स जबरदस्त से चल रहे थे, और ट्रैक्स के साथ साथ जिन चीजों का ज्यादा खदशा था वो ये थी कि हमारे पास जो लिसनर इस वक्त हमें कॉल कर रहे हैं और जो कॉल करते हुए हम सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि हमने सिर्फ उन चीज़ों को मैनेज करना है जो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लाइफ में इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ जिन लोगों की कॉल इस वक्त आई है, एडवोकेट जमीर साहब थैंक यू वेरी मच, और जो लोग इस वक्त मुझे ट्यून कर रहे हैं 97.1 एफएम पे, मोटिवेशन कैसी है, अचीवमेंट्स कैसी हैं, और सक्सेस का क्या रेट चल रहा है मार्केट में, नहीं अपनी लाइफ में, तो बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि जनाब हमारे कुछ बड़े प्यारे से ना वासी हैं, लिसनर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब मौसम बड़ा दिल खराश है। जनाब मौसम दिल खराश क्यों है? मौसम दिल खराश नहीं है, मौसम बड़ा प्यारा है जनाब। 19 डिग्री टेम्परेचर है मैक्सिमम, मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया है। फिजा में ह्यूमिडिटी का लेवल जनाब इस वक्त 46% है, बारिश भी है कहीं जगहों पर हमारे नॉटिंघमशायर में, और जितनी खूबसूरत सड़कें अब हमारे नॉटिंघमशायर की बन चुकी हैं, जितनी प्यारी प्यारी मौसमी जो रसूमात हैं वो अदा हो रही हैं, आपसे गुजारिश है कि इस वेदर को इंजॉय कीजिए। हाँ, अगर आप दिल नाराश हैं या दिल खराश हैं तो नाराश मत होइए, उम्मीदें रखिए, पैवस्ता रहे, जजर से उम्मीदें बाहर रख, और सोचिए उन लोगों को जिन लोगों के पास ये ज़िंदगी भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास ये ज़िंदगी नहीं है उन लोगों से गुजारिश है कि ज़िंदगी को अच्छे तरीके से इंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, कहीं कहीं कहीं आपको मेहनत करनी पड़ती है, कहीं आपको खोना पड़ता है, कहीं आपको पाना पड़ता है, और जहाँ पे आप पा लें वहाँ पे खोने की उम्मीद कभी भी ना रखें, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ खो दें जो आपको पाने में बड़ी मेहनत करते हैं। क्या जबरदस्त सा फलसफा सुबह सुबह जनाब आपकी समातों की नजर किया मैंने 97.1 एफएम का लाइव स्टूडियो, आपका मेजबान नासिर खान, खूबसूरत ट्रैक भी मेरे पास है, आप इस ट्रैक को एंजॉय भी करेंगे, और हल्की सी हल्की सी हल्की सी किरण ओजला, अच्छा किरण ओजला का जनाब बिल्कुल आपको बड़ी अजीब सी फरमाइश है, आजकल तो दौर पाजी चल रहा है सतिंदर सरताज पाजी का, केड़े पासे जाइए सजना, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त सा हिट ट्रैक दे गए जनाब इस जबरदस्त सी मूवी के अंदर, और क्या जैस्मिन सैंडल्स ने कमाल की यार, व्हाट अ वॉइस। एनीवे जनाब गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का खूबसूरत सा सफर आपका मेजबान आसिर खान आपके साथ, करण औजला की जनाब बिल्कुल हम प्ले करेंगे, डेफिनेटली हम इसलिए बैठे हैं, एंजॉय कीजिए कुछ खूबसूरत से ट्रैक्स, रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम। सेगमेंट खत्म होगा ठीक 6 मिनट के बाद, कमर्शियल ब्रेक हाइल होगी, कमर्शियल ब्रेक से जब वापिस आएंगे ना तो फिर जनाब हम अपना जो सेगमेंट है पर्सनैलिटी ऑफ द डे वो होगा आपके साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड योर होस्ट विल बी राइट बैक आफ्टर

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।

वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक डियर लिसनर्स ऑफ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड अब आपका मेजबान नासिर खान आपके साथ मौजूद हैं जनाब। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल कहता कह रहे हैं उसे एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हुए स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तो जनाब समझाएं सुलझाएं बताएं वो लोग कैसे हैं जिन्होंने अभी तक रेडियो 97.1 एफएम को ट्यून नहीं किया, कैसे हैं आप सब लोग, कैफ अहवालत जो की हाल चाल है मेरा तितवाड़ा में फिट फाट और इसलिए तो आपके पास वापस आ गया हूँ। बात हम तो अक्सर मोटिवेशन के हवाले से करते हैं लेकिन ऐसे लोग जो हमारे पास हमेशा हमारी आंखों के सामने रहते हैं ना वो अपनी कदर मंजिलत खो भी देते हैं लेकिन ये एक डिफरेंट फिनोमेना है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसको डीपली अंडरस्टैंड करें या कोशिश करें कि सुबह की जो मॉर्निंग वाइब्स है इन वाइब्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ हमारे पास कौन सी है, वो है होप, उम्मीद। अब एक चीज़ बड़े गौर से देखें कि जिस भी मसलक से जिस भी मज़हब से जितने भी हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी हमारे नॉटिंघम शहर में जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हों उनका इस चीज़ से कोई लेना देना है अगले लम्हे का किसी को नहीं पता, लेकिन हम अपना प्लान करते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स का। क्यों करते हैं? इसलिए कि हमें उम्मीद होती है, उम्मीद पे जिंदगी कायम है। और जो लोग नाराज रहते हैं ना एक दूसरे से, यार लोग ये समझ नहीं पाते कि वजह क्या है एक दूसरे से नाराज होने की, तो फिर इसका मतलब ये है कि वजह है ही नहीं है। अब किसी सियाने बंदे से एक बार किसी ने पूछा

0: अब देखें, जब मैंने फिर सियाना कहा, आप लोगों ने मेरी तरफ देखा, ऐसा क्यों करते हैं? हाँ ठीक है, सियाना तो मैं हूँ, लेकिन चलें कोई बात नहीं, जोक सब पार्ट, तंजो मजहबी साथ साथ चलता रहता है। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का एक खूबसूरत सा सफर है। सियाने बनने से किसी ने पूछा कि जनाब मैं को कैसे दिल से निकाला जाए, बल्कि आई थिंक इट वॉज बानो कुदसिया द फेमस ऑथर फ्रॉम पाकिस्तान अशफाक रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी की ये अहलिया मोहतरमा थी, और इनसे किसी ने पूछा कि जनाब मैं को अपने दिल से कैसे निकाला जाए, तो उन्होंने बड़ी प्यारी सी बात की, उन्होंने कहा मैं को हम कर देते हैं। क्या जबरदस्त बात है यार, कमाल, यानी मैं को हम कर दे और मैं फिर निकल गई। इसीलिए जब आपके जहन में ये चीज़ आए ना कि आप अकेले हैं और आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं बैठे हुए, और अगर आप खूबसूरत लगते हुए अकेले बैठ के आप ये सोचें कि मैं टेक्स्ट कर लूँ, मैं किसी को मैसेज कर लूँ, तो वो जिसको आप मैसेज कर रहे हैं, जिसको टेक्स्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है आप हम हो चुके हैं, अब आप मैं नहीं रहे। इसलिए तो शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में कहता है कि अब अक्सर बैठा बैठा गुम हो जाता हूँ, क्योंकि अब मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। एनीवे, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज जनाब, खूबसूरत से लोग मेरे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का ये सफर, और मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर खान। सो स्टे ट्यून, और ये चीज़ मुझे बताइए कि जनाब अब जो सेगमेंट है वो है पर्सनैलिटी ऑफ द डे। जब हम बात करते हैं ना किसी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे, जब हम बात करते हैं किसी कामयाब बंदे की, या फिर हम सक्सेसफुल लाइफ की तरफ देखते हैं, या सोचते हैं कि अगर इस लाइफ में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, और जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ब्लेसिंग्स, रहमतें, नेमतें मौजूद हैं, और उन नेमतों रहमतों का शुक्र कैसे अदा किया जाए, कैसे प्रार्थना की जाए, कैसे भगवान से मांगा जाए, कैसे ऊपर वाले को पुकारा जाए, या कैसे बाबे जी दी मैर हो जाए साढ़े थे, Nobody knows, लेकिन एक चीज़ का बड़ा बड़ा बड़ा हद तक इम्कान कोशिश रखिए और इस चीज़ को अपने अंदर समो लीजिए कि जब ऊपर वाला चाहेगा तभी सब कुछ होगा। सो स्टे ट्यून, और जबरदस्त सेगमेंट पर्सनैलिटी ऑफ द डे। आज की जो पर्सनैलिटी है ना मेरे साथ, द ग्रेट बिल गेट्स, फ्रॉम अ कॉलेज ड्रॉप आउट टू रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। सुनिए जनाब जबरदस्त सी मोटिवेशन सक्सेस स्टोरी, रहते हैं इस स्टोरी के उस पार, आप मेरे साथ, मैं आपके साथ। स्टे ट्यून, एंड योर होस्ट विल बी राइट बैक।
1: बिल गेट्स वाज अ शाय एंड क्वाइट बॉय हु लव्ड स्पेंडिंग टाइम इन हिज रूम रीडिंग बुक्स फॉर आवर्स, एंड बिकॉज ही वाज स्मॉल फॉर हिज एज ही वाज ऑफन बुलीड एज अ चाइल्ड, सो ही ग्रू अप एज एन इंट्रोवर्टेड एंड एंटी सोशल किड। इन हाई स्कूल हिज ओरिजिनल प्लान वाज टू टीच मैथ, बट दैट वाज अंटिल हिज फ्रेंड पॉल एलन कन्विंस्ड हिम टू परस्यू अ करियर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो बिल गेट्स क्विकली टुक हिज एडवाइस एंड रोट हिज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम एट द एज ऑफ 13, बट हिज पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी, दे हैड अदर प्लान्स फॉर देयर चाइल्ड, दे wanted him to pursue a law career. So to make his parents happy, he went to Harvard to study law. But he found himself spending more time on a computer than in class. And that was because he was really happy when he was coding. And on the other side, law was not something that excited him. So it was time for a bold move. He dropped out of Harvard University to pursue his dream and formed Microsoft with his childhood friend Paul Allen. But everything wasn't going perfect. At first, the company struggled financially. Some of their big clients went bankrupt. So Bill Gates faced many challenges and obstacles on his path to success. One of those challenges was Windows 1. Young Bill Gates predicted that after its release, Windows will be running on 90% of all computers. But he was wrong. Windows was received very poorly by critics, and only 10% of computers ended using it, and that was not even close to what Bill Gates was expecting. He was disappointed. It was a big setback, but also a stepping stone for Microsoft. After 2 years of hard work and long hours, Windows 2 was released. Big innovations were included. Microsoft Word and Excel were presented for the first time. So Windows became a huge commercial success and revolutionized the world. Finally, 90% of computers were using Windows. Bill Gates became a billionaire at the age of 31. And only 8 years later, he became the richest man in the world. And through the Bill and Melinda Gates Foundation, he has donated more than $45 billion. Bill Gates is one of the most successful people in the world, and there's a lot that can be learned from his success story. I'm not saying you should drop out of school and become the next Bill Gates. To be successful in life, you don't have to be a genius. Of course, that can't hurt. But whatever is important to you, do it with passion and have a vision. Whether it's a small business, getting a promotion, working from home, playing an instrument, sports, learning a new language, or even breaking records, like whatever, believe in yourself and don't let failures discourage you. Even Bill Gates failed many times in his career. He couldn't predict everything, so he faced many obstacles and failures from the very beginning. Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose. He's extremely serious about the use of his time and hates the idea of wasting time. So stop procrastinating. Think about all the stupid, unnecessary things you're doing every day that keep you away from becoming great. And if you're suffering right now and you feel stuck and angry about where you are in your life, ask yourself one simple question and be honest. What ridiculous things have I been doing every day that are wasting my time and energy? Because if you really think about your daily habits, I bet you can find at least 5 things that you're doing right now that prevent you from pursuing your dreams. How many hours are you wasting every day? Think about it. How much closer could you get to achieving your goals if you only stopped wasting your time to meaningless and useless activities that give you momentarily happiness, but at the end of the day, actually make you unhappy? Plan your day ahead, get up at the same time every day, and organize your life. If you don't build your dreams, someone else will hire you to build theirs. So, what's your story?

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आपका मेजबान है आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम। तो जनाब ये थी वो सिचुएशन जो बिल गेट्स साहब ने अपनी सारी जिंदगी में गुजारी और गुजारने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि यार मैंने कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की। कई बार अपने करियर में फेल हुए और अपने कॉन्टेक्स्ट में ये भी चीज़ें देखी कि जब करियर में बंदा फेल होता है तो फिर इंसान को थोड़े से लोग पीछे हटते हैं, छोड़ जाते हैं या कहीं आप पे कोई थोड़ा सा मुश्किल वक्त आ जाता है या आपकी प्रोग्रेस किसी वजह से लो हो जाती है तो बड़े आपके खास आपके प्यारे आपके चाहने वाले बड़ी सारी चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं और वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप चाहते हैं कि यार इफ़ देयर इज एनीथिंग तो डिस्कशन में आए यानी वेटिंग फॉर देम। लेकिन होता क्या है कि वो लोग अपने माइंड के मुताबिक डेफिनेटली विजन होता है प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रेडिक्ट चीज़ें हो नहीं सकती और चीज़ों को प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ये हो कि आपका विजन कैसा और आपका विजन जब इंसान को एक बार उस लेवल तक पहुंचा दे जिस लेवल पे वो सोचना ये चाहता है तो फिर आपको वही चीज़ नज़र आएगी जो आप सोच रहे हैं। विजन कभी भी आपके ख्यालात से हट के नहीं चलता। अक्सर लोग कहते हैं ना मेरी छठी हिस्स बहुत तेज़ है, सातवीं मेरी तो नौवीं हिस्स भी बड़ी तेज़ है, दसवीं भी बड़ी तेज़ है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपनी सोचों से, अपनी असबाज से थोड़ा सा हटा के पेश करते हैं मार्केट में तो फिर आप वो चाहते हैं, फिर आप वो सोचते हैं, फिर वो आप समझते हैं जिन चीज़ों को आप देखना चाहते हैं। जब जिस निगाह से आप देखना चाहते हैं आपको विजन वैसा ही मिलेगा और फिर यहाँ पे आता है मुशाहिदा और यहाँ पे आता है एक्सपीरियंस। और जब आपके तजुर्बात आपकी एक्सपीरियंस के साथ मैच करते हैं और गुड मॉर्निंग के लिए आपको एक खूबसूरती वाइब मिलती है और खूबसूरती वाइब के साथ साथ आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आपके पास ज़िंदगी की जो मोटिवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामिन 8 से 10 मिनट का वक्त रह चुका है मेरा और आपका गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का ये खूबसूरत सफ़र है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि जनाब चीज़ों को प्रेडिक्ट करना छोड़ दीजिए, विजन वही आपको आएंगे जो आप सोचना चाहते हैं क्योंकि माइंड आपका ऑलरेडी उस एक्सरसाइज पे चल रहा है और जब माइंड आपका एक उस एक्सरसाइज पे चलता है उस सिचुएशन को समझता है उस सिचुएशन को निखारता है तो निखारने के बाद जो विजन बनता है लोग कहते हैं कि मेरा तजुर्बा है और देखो ऐसा ही हुआ। तो ये बेसिकली सारा केमिकल लुच्चा है। आई जस्ट रिमेम्बर मुन्ना भाई MBBS, व्हाट अ स्वीट फिल्म, संजय पाजी क्या बात है। और जनाब इसके साथ साथ वक्त भी हुआ चाहता है, आपसे इजाजत भी लेंगे लेकिन करण औजला के जो मैशअप्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं और जबरदस्त सा केड़े पासे जाइए सजना, कमाल कमाल कमाल। मेरा फेवरेट ट्रैक जनाब इसकी फरमाइश भी आई है और जो लोग अभी तक ओके 01157100971 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एंड इफ यू वांट अ कॉल लाइव आप व्हाट्सएप पे मुझे लाइव कॉल भी कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं नॉटिंघम के इस खूबसूरत से सुबह खैर के सफर में। जनाब जो सवारी है वो अपनी मंजिल की तरफ रवानदवा है, आपसे गुजारिश है कि आते जाइए सवार होते जाइए लेकिन अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं डैप पे फजा के नाम से सर्च करने के बाद या फिर 97.1 FM को आपने ट्यून अप किया हुआ है तो आपसे गुजारिश है कि ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग। लेकिन अगर आप गुड मॉर्निंग नॉटिंघम को बड़े इनहमाक से सुनना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है पेडस्टल पे कहीं पार्क कीजिए, कोस्टा या स्टारबक्स के सामने डबल एस्प्रेसो शॉर्ट फॉर मी एंड एक कैपेचिनो आप अपने लिए भी, ऑर्डर करने के बाद बिल दोनों का पे करना है और उसके बाद रेडियो ऑन करके दोनों इकट्ठी पीनी है आपने, आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और मैं रहूंगा आपके साथ। लेकिन मुझे बता दीजिए अगर आप मेरे साथ कॉफी पीना चाहते हैं तो मैं भी अपनी कॉफी स्टूडियो में ऑर्डर कर लूंगा, यहां मेरा सिप होगा वहां आपका और ऐसे हम कॉफी भी इकट्ठे पी लेंगे। एनीवे गुड मॉर्निंग नॉटिंघम, थैंक्स अ लॉट जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वासी हैं जिन्होंने अभी हमसे राबता किया। प्रार्थना है ऊपर वाले से कि जनाब आज की जो आपकी आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं और जितनी भी ऐसी चीजें जो आपके पास मौजूद नहीं है ऊपर वाला आपको दे, बाबा जी दी मेहर हो जाए, अल्लाह की जात का कर्म हो जाए, भगवान हर चीज वो आपको अता करे जो आप मांगना चाहते हैं सोचना चाहते हैं। अपने विजन को और प्रेडिक्ट ज्यादा मत करने की कोशिश कीजिए, आप प्रेडिक्शन कई बार इंसान की गलत भी होती है, फैक्ट्स पे चलिए, यही आज की मोटिवेशन है, यही आज की उम्मीद है और यही आज की इंपॉर्टेंट बात है। तो जनाब बिल गेट्स साहब ने भी यही किया और आपके सामने रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, खैर अब तो बहुत ज्यादा है लेकिन उस वक्त जब ये स्टोरी लिखी गई और जब उनकी सारी जिंदगी को सामने लाया गया तो उस कला में जब उन्होंने ये देखा कि मेरे से
ऊपर भी कलाकार मौजूद हैं। हर शेर का सवा शेर है, हर सवा शेर का शेर है। किसी को नहीं पता कि सवा शेर कौन है, शेर कौन है, ये सिर्फ ऊपर वाले की जात बेहतर जानती है। सो स्टे ट्यून, जनाब करण औजला को एक बार फिर आपके साथ छोड़े जाते हैं। आपका मेज़बान नासिर खान चाहेगा आपसे इजाज़त, अपने मेज़बान को दीजिए बड़े प्यार से इजाज़त। सो स्टे ट्यून विद फॉर 97.1 एफएम, बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनिए जबरदस्त ट्रैक। गुड बाय गुड बाय गुड बाय नौटिका।

Assalamu alaikum, namaste, satsyakar, hello, a very beautiful, energetic and fabulous morning to all my listeners tuning in. मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो द डीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM. डियर लिसनर्स, रेडियो फजा 97.1 FM है वो प्लेटफॉर्म जहां मिलती है आपको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट. सो इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेकर चलेंगे हम और आप एक साथ अब से लेकर ठीक दो घंटे तक, यानी हम और आप रहेंगे साथ साथ अब से लेकर ठीक दो घंटे तक. तो जी, इंतजार किस बात का है, अभी उठाइए फोन. 01157100971 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर. सो जल्दी से जाइए और इस नंबर को सेव कर लीजिए ताकि आप हमसे इसी तरह से कनेक्टेड रहें. और इस नंबर पे जाकर अपने नाम के साथ साथ कोई प्यारा सा पैगाम या जो कुछ आप चाहते हैं हमसे शेयर करना लिखकर भेज दीजिए. इसके साथ साथ आप हमें radiofaza.com.uk की वेबसाइट के थ्रू लाइव ट्यून कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को इजीली अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. बेसिक सा तरीका है, आपने क्या करना है, इफ़ यू आर अ एंड्रॉयड यूजर सो आपने जाना है गूगल स्टोर पर, अगर आप हैं एप्पल यूजर सो आपने जाना है एप्पल स्टोर पर. वहां जाकर आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स हमारी एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी. सो जाइए और जल्दी से हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इसी तरह से कनेक्टेड रहें और आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे. अब हम बात करेंगे उन लोगों की के जो लोग ड्राइव कर रहे हैं और ड्यूरिंग ड्राइविंग चाहते हैं कि उनकी डेस्टिनेशन, उनका सफर अच्छा हो जाए, खूबसूरत हो जाए. सो आप हमें फजा टैब के थ्रू ट्यून कर सकते हैं. ये थे वो सब तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं. सो अपने मौजूदगी का एहसास दिलाते रहिए और हमें बताते रहिए कि आप हमारे साथ मौजूद हैं. कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अब तक अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे. वेलकम टू द 2nd June 2026. कैन यू बिलीव इट, जून का दूसरा दिन आज शुरू हो चुका है और अब मौसम में भी थोड़ी थोड़ी हवा के साथ साथ गर्मी भी इंक्रीज होती जा रही है. जैसा कि कल मंडे था और बाज़ुकात समटाइम्स मंडे को हम प्लानिंग तो स्टार्ट कर देते हैं कि हमने इस वीक में क्या करना है, हमारे क्या गोल्स हैं, क्या चीज़ें अचीव करनी है, बट समहाउ वो प्लानिंग करते करते ही मंडे का दिन गुजर जाता है. लेकिन जो असल काम है, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है और जो प्रॉपर स्ट्रेटजीज जिनको हम अडॉप्ट करते हैं वो हमेशा ट्यूजडे से स्टार्ट होती हैं. जी, तो आज का दिन है पूरी एनर्जी के साथ, एक बड़ी सी स्माइल के साथ जिंदगी को एम्ब्रेस करने का. एवरी मॉर्निंग इज अ ब्लैंक कैनवास, इट इज अप टू यू व्हाट कलर्स यू चूज टू पेंट ऑन इट. तो बस अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, किचन में हैं या फिर ऑफिस की डेस्क पर बैठे हुए हैं, अपने हेडफोन्स टाइट कर लीजिए क्योंकि अगले आने वाले दो घंटे आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत तरीन लम्हात होने वाले हैं. तमाम तर फिक्रों से खुद को आजाद कर दीजिए और इस खूबसूरत सी, इस हंसी सी गुफ्तगू का सिलसिला बन जाए क्योंकि हम रेडियो फजा 97.1 चाहता है कि आपका दिन, आपकी सुबह हो और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा यादगार. लिसनर्स, शो का बाकायदा आगाज करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक अदद स्टार्टिंग म्यूजिकल ट्रैक को ऐड करने का. सो चलिए सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक ताकि आपकी सुबह को म्यूजिक के साथ थोड़ा सा रंगीन, थोड़ा सा प्रिटी, थोड़ा सा खूबसूरत बना दिया जाए. सो ये खूबसूरत सा ट्रैक उन तमाम तर लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है.

वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय किया होगा और इस ट्रैक ने आपको तकरीबन रिफ्रेश कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे हर शो का स्टार्टअप होता है एक खूबसूरत से, एक मोटिवेशनल से कोट से, ताकि आपके दिन के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी को ऐड कर दिया जाए, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव बनाया जाए और जितनी भी नेगेटिविटी, डीमोटिवेशन आपकी लाइफ में या आपके इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रही है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। सो आज का हमारा कोट आपको बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव देगा। सो कोट कुछ यूं है कि डू नॉट लुक फॉर हीलिंग एट द फीट ऑफ दोज हु ब्रोक यू, स्टैंड अप, लुक इन द मिरर एंड रियलाइज डैट द मैजिक इज विद इन यू। चलिए इस खूबसूरत सी बात को जरा डीपली, जरा गहराई से, जरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि उन लोगों के कदमों में अपना सुकून और अपनी शिफा मत ढूंढे जिन्होंने आपको तोड़ा हो, जिन्होंने आपको दुख दिया हो। खड़े हो जाओ, आईने में देखो और ये जान लो कि असली जादू, असली ताकत तुम्हारे अपने अंदर है। यानी कि यू सी माई लवली डीवाज एंड माई लिसनर्स, हम अक्सर क्या करते हैं, जब हमें कोई तकलीफ पहुंचाता है या कोई काम हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता तो हम उदास होकर बैठ जाते हैं। वी विल वेट फॉर अदर्स टू कम एंड फिक्स अस। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सीकिंग वैलिडेशन। लेकिन जैसा कि आज जून की एक खूबसूरत हसीन सी शुरुआत है, तो मैं आपको याद दिलाती चलती हूँ कि आप किसी के मोहताज नहीं है। टू बी अ ट्रू डीवा यू हैव टू रियलाइज योर ओन वर्थ। जब आप खुद अपनी कदर करेंगे तो दुनिया की कोई चीज आपको सुकून नहीं दे सकती। जी तो लिसनर्स, ये था हमारा आज का खूबसूरत सा प्यारा सा कोट ऑफ द डे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जरा इसको डीपली और एक्सप्लेन कर देती हूँ फॉर दोस्त लिसनर्स जिन्हें मेरी बातें थोड़ी सी गहरी लगती हैं, थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं। सो बेसिकली बाज़ुकात हम क्या चाहते हैं कि हमें वैलिडेशन चाहिए होती है। हम हर चीज़ में दूसरों पर डिपेंड करते हैं जस्ट एज अ नॉर्मल पर्सन। अगर मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दूँ तो बाज़ुकात समटाइम्स वेन एवर I put something on social media, so मैं क्या करती हूँ, उससे पहले अपने एक से दो फ्रेंड से ज़रूर पूछती हूँ, उनकी वैलिडेशन लेती हूँ कि अच्छा क्या मुझे ये पोस्ट करना चाहिए, इज़ इट गुड और नॉट, कि ये पिक्चर अच्छी लग रही है या फिर इसके अंदर मुझे फ़िल्टर ऐड करना चाहिए। सो ये जो एक चीज़ होती है, इट मीन्स कि मैं दूसरों पर डिपेंड कर रही हूँ, मेरी खुद की कोई ओपिनियन नहीं है, खुद की कोई राय नहीं है और मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि दूसरे मुझे क्या ओपिनियन देंगे। और फॉर दोज पीपल जो क्या करते हैं ज़िंदगी के हर मामलात में, हर काम में, अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो उनके मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं, इस चीज़ का वेट करते हैं कि दूसरा आएगा और उन्हें फिक्स कर देगा। बट ऑनेस्टली कोई भी आपको फिक्स नहीं करता, कोई भी आपके उन फ्लॉज को नहीं भरता, इट्स यू। यू हैव द एबिलिटी टू फिक्स योर सेल्फ। सो आपने क्या करना है कि सेल्फ वैलिडेशन यानी कि सीकिंग वैलिडेशन पर अमल नहीं करना, दूसरों का ओपिनियन लें, इट्स गुड, क्योंकि जब हम दूसरों से ओपिनियन लेते हैं तो हमें डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप सबसे ओपिनियन लें, लेकिन हमेशा आप खुद की राय को, खुद को खुद वैल्यू करें।

वेल, उम्मीद करती हूँ कि ये कोट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके दिन को और आपकी जिंदगी को ये जरूर एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की तरफ लाएगा। जैसा कि आज एक खूबसूरत सी सुबह है, सो मेरा आप सबसे एक छोटा सा मजेदार सा सवाल है कि जैसा कि ये एक न्यू मंथ, एक न्यू वीक स्टार्ट हो चुका है, तो वो आपका हर न्यू मंथ पर, हर न्यू वीक पर एनर्जी लेवल कैसा होता है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए मैसेज करके किस तरह से आपने मुझे बताना है। सिंपली आपने जाना है 01157100971 पर और वहाँ जाकर आपने मुझे बताना है कि आपका एनर्जी लेवल क्या होता है और आपका हर मंथ के स्टार्ट में क्या गोल्स होते हैं, क्या एम्बिशंस होते हैं और क्या करने का आप सोच रहे होते हैं।

चलिए लिसनर्स, जरा बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा हर्ट के, जैसे कि हम हमेशा बातचीत करते ही रहते हैं मोटिवेशन की, मोटिवेट करने की। लेकिन आज हम बात करते हैं थोड़े से क्रिटिसिज्म के ऊपर, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको अपने आसपास के लोगों के साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करनी चाहिए और नेगेटिविटी को साइड पर रखना चाहिए। लेकिन एक डिफरेंट पॉइंट है जिसको मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिसनर्स के साथ थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। जहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, मोटिवेशन की, वहीं क्रिटिसिज्म भी इसके साथ ही एक टर्म जो यूज़ की जाती है, हमें चाहिए कि उसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर दें। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग समझते हैं कि जो लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, सो उन लोगों के माइंड में, उन लोगों के लिए जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, एक नेगेटिव इमेज, एक नेगेटिव थॉट और एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट हो जाता है। बट ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपको क्रिटिसिज्म देते हैं, इनडायरेक्टली वो ही आपकी इम्प्रूवमेंट में अहम रोल प्ले करते हैं। अब अगर आप देखें, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई आपको पॉइंट आउट नहीं करेगा, तो आपको अपनी लाइफ में वो फ्लॉज कैसे दिखेंगे जो आपको नॉर्मली नहीं दिखते। अगर हर इंसान आपका अच्छा दोस्त हमेशा वही होता है जो आपको पॉइंट आउट करता है, आपको चीज़ों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी फ्रेंड को कोई चीज़ दिखाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई मेड अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट और मैं अपनी दोस्त को दिखाती हूँ, तो अगर मेरी दोस्त कहती है कि वाओ इट्स परफेक्ट, इट्स रियली गुड, सो इट मीन्स कि शी इज़ माई गुड फ्रेंड। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मेरी दोस्त मुझे साथ ही साथ ये एडवाइस देती है कि सुनो तुम्हारे प्रोजेक्ट में सम चीज़ें, कुछ चीज़ें फिक्स नहीं हैं, इनको तुम फिक्स कर लो, सो भले मुझे लगेगा एट दैट मोमेंट कि ये मुझे क्रिटिसाइज कर रही है या पॉइंट आउट कर रही है, बट ऑनेस्टली मेरी इम्प्रूवमेंट में सबसे बड़ा हाथ भी उसी का होगा जो मुझे क्रिटिसाइज करेगा। सो जहाँ हम बात करते हैं मोटिवेशन की, पॉजिटिविटी की, तो वहीं हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे प्यारे लिसनर्स, हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्रिटिसिज्म को हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली देखेंगे तभी लाइफ आगे बढ़ सकेगी और हम जिंदगी में कामयाब हो सकेंगे। सो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको अमल करके, जिन पर फॉलो करके आप एक ट्रू डीवा बन सकती हैं और जिंदगी में बहुत आगे जा सकती हैं। सो द लिसनर्स, इसी के साथ साथ शो में वक्त हुआ है अभी एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। वैसे बातें करते करते दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि वक्त हो चुका है तो हमें कमर्शियल ब्रेक पर जाना पड़ेगा। सो चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM के साथ इसी तरह से कनेक्टेड रहें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Radio station for people who love music. 97.1 FM.

ज्वाइन किया है आप सभी को बताते चलती हूँ। इस वक्त वक्त हुआ है हमारे शो में उस ऐसे सेगमेंट का जिसको रहता है हमारी तमाम तर डिवास को, स्पेशली उन हाउसवाइफ्स को बेसब्री से इंतजार जो इस सोच में होती हैं कि डेली बेसिस पे जहाँ हमें लॉट ऑफ स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत से काम काज करने पड़ते हैं, वहीं एक सबसे बड़ा टास्क तो ये होता है कि ये चीज़ डिसाइड की जाए कि आज खाने में क्या बनाया जाए। क्योंकि जैसे कि एशियन फैमिलीज में हम लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में घर में बहुत सारे लोग रहते होते हैं, और जहाँ ज़्यादा लोग रहते होते हैं वहीं हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है, फूड चॉइसेस होती हैं। सो इन सब में जो हमारी बेचारी एशियन खवातीन हैं वो इस सोच में पड़ी रहती हैं कि अच्छा क्या पकाया जाए, क्या कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि सबको पसंद आए, सबका फेवरेट हो, और चाहे बुजुर्ग हों या बच्चे सभी उसको शौक से खाएं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी रिसेंटली ईद उल अज़हा गुजरी है, सो ईद जैसे कि इस तरह के फेस्टिव सीजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, दावतों का सिलसिला होता है, और जितनी भी रेसिपीज, जितनी भी डिशेस हम ट्राई करते हैं वो सभी या तो बीफ में होती हैं या फिर मटन में। एंड आई नो बहुत सारा मीट खा खा कर इंसान बोर हो जाता है, पीपल नीड समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग चेंज। सो इसी को मद्देनजर रखते हुए कल के शो में हमने बनाई थी स्पाइसी दाल चावल, क्योंकि आई नो जब हम बहुत सारा मीट खा लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। सो अ लॉट ऑफ मीट के बाद जब हम कुछ डिफरेंट टेस्ट का खाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी लाइट वेट लगता है और काफ़ी डिलिशियस लगता है। सो मैंने सोचा आज कि जहाँ हमने कल दाल चावल खाए थे तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसी रेसिपीज आपके लिए लेकर आऊं जो कि बीफ और मटन से ज़रा डिफरेंट हो, ज़रा हट के हों, ताकि जो आप एक ही तरह का मीट खा खा कर बोर हो चुके हैं उसमें आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिले। तो आज मैं लाई हूँ अपनी तमाम तर डिवास के लिए ऐसी ही दो रेसिपीज जो थोड़ी सी डिफरेंट, आई नो डिफरेंस तो थोड़ा माइनर सा है, बट ट्रस्ट मी बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको इसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा फील होता है। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जो मीट जैसे कि मटन हो गया, बीफ हो गया, इन दोनों का टेस्ट थोड़ा मिलता जुलता होता है, बट चिकन टोटली साउंड्स डिफरेंट। सो आज की जो हमारी रेसिपी है वो चिकन में है, क्योंकि आई नो आपने काफ़ी ज़्यादा बीफ और काफ़ी ज़्यादा मटन खा लिया है, सो अब आई थिंक चिकन को थोड़ा सा चांस देना चाहिए किचन में।

0: जी तो लिसनर्स, आज की जो हमारी फर्स्ट रेसिपी है जो हम बनाने जा रहे हैं वो है वाइट चिकन कड़ाही। क्योंकि जैसा कि बीफ और मटन से हम बोर हो चुके हैं तो अब हम बनाएंगे कुछ चिकन में, ताकि हमारे टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट हो, टेस्ट इन्हेंस हो और रेसिपी भी डिलिशियस हो। सो इंग्रेडिएंट्स आप सभी से शेयर करती हूँ, लेकिन जितनी देर में आप कॉपी और पेंसिल ढूंढ रहे हैं, क्यों ना शो में म्यूजिक मस्ती को भी थोड़ा ऐड किया जाए। सो शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। आई नो जो पिछला ट्रैक था वो काफ़ी सिंपल सा था, काफ़ी माइल्ड सा था, बट सोच रही हूँ कि कुछ डिफरेंट तरह का फ्यूजनल म्यूजिक ऐड किया जाए। सो लेट्स सी आपको ये कैसा लगता है। बट आई थिंक सो थोड़ा सा ओल्ड म्यूजिक है, बट ट्रस्ट मी, जिन लोगों को थोड़ा शोर और थोड़ा हंगामा वाला म्यूजिक अच्छा लगता है उनको ये जरूर अच्छा लगेगा। सो सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक और फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी डिलिशियस रेसिपी को।
1: Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.

वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ ये सॉन्ग थोड़ा सा डिफरेंट था. आई नो टेस्ट बर्ड्स, मेरे टेस्ट बर्ड्स से तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना लिसनर्स के लिए डिफरेंट तरह का डिफरेंट फ्यूजन का म्यूजिक ऐड किया जाए. होप सो कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको लाउड म्यूजिक अच्छा लगता होगा उनके लिए ये सॉन्ग बेस्ट होगा, और ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको माइल्ड म्यूजिक पसंद होगा. तो ये सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंस होती है. सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा गाना हम अपने शो में शामिल करें, सो सिंपली आप हमें बता सकते हैं. 01157100971 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर. सो सिंपली आप इस नंबर पर जाकर हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह के गाने सुनने का शौक है और किस तरह का म्यूजिक आप चाहते हैं हम प्ले करें. चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब. आई थिंक आप सभी ने अब तक अपनी नोटबुक्स ओपन कर ली होगी. सो इंग्रेडिएंट्स आप सभी से शेयर करती हूँ ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए. अच्छा, इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए चिकन 1 किलोग्राम, साथ आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा बासमती घी या फिर कुकिंग ऑयल 1 कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 5 से 7 अदद, और साथ ही साथ हमें चाहिए योगर्ट 1 कप, बिल्कुल अच्छी तरह से आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है. फ्रेश क्रीम चाहिए हमें 4 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा और धनिया 1 टेबल स्पून, और एज़ यूजुअल आप सभी को पता है नमक हसवे ज़रूरत हसवे ज़ायका, आप अपने टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं. अगर आपको खानों में नमक तेज़ पसंद है तो उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं, अदरवाइज इट्स टोटली योर चॉइस कि आप किस तरह से इसको ऐड करते हैं. अब आपने क्या करना है, अदरक के जो बच्चे कुछ ही, पहले तो आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है. सेकेंडली आपने क्या करना है, अदरक को कट कर लेना है और उसको इस रुख में कट करना है कि उसके लंबे लंबे पीसेस बन जाएं, ठीक है. और बहुत सारा हरा धनिया लेकर उसको अच्छी तरह से साफ करके फ्रेश धनिया को कट करके आपने रख देना है, जिसे हम यूज़ करेंगे गार्निशिंग में. अच्छा, आप सभी सोच रहे होंगे कि इस रेसिपी में तो मैंने प्याज शामिल ही नहीं किया और ना टमाटर. तो आप सबको बताती चलती हूँ कि इस रेसिपी में हम बिल्कुल भी प्याज ऐड नहीं करेंगे और ना ही कोई टमाटोज. सो इसीलिए मैंने बोला है कि ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इसके टेस्ट बर्ड्स आपको ज़रूर डिफरेंट लगेंगे, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट तरह के टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं. सो आई थिंक सो आप सभी ने इंग्रेडिएंट्स तो नो डाउन कर लिए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं और रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं कि किस तरह से आपने इसको बनाना है. सबसे पहले आपने ले लेनी है 1 अदद कड़ाही, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है. गर्म करने के बाद उसमें आपने 1 कप कुकिंग ऑयल या फिर बासमती घी, जो कि आपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लिया है, उसको लेके अच्छे से गर्म कर लेना है. फिर आपने इसमें, जब आपका ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाए, आपने ऐड कर देना है चिकन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद खूब तेज़ आंच पर 5 से लेकर 7 मिनट तक अच्छी तरह से इसे भूनना है. आपने याद रखना है कि आपने इतना भूनना है कि जो चिकन का रंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाए और गोल्डन हो जाए. सो जब आप इसको भून रहे होंगे तो साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि कब आपके चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है. अच्छा, तो लिसनर्स, जैसे ही आपको लगे कि आपका चिकन जो है वो अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब बारी आती है, यानी कि इट्स टाइम टू स्लो द आंच. तो आपने आंच को बिल्कुल हल्का कर लेना है. फिर आपने इसमें वही पिसी हुई हरी मिर्चें, नमक, भुना हुआ ज़ीरा, धनिया शामिल करके इसे मज़ीद 2 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है, ठीक है. अब इसके बाद जब 2 से 3 मिनट हो जाएं और आपको लगे कि आपके मसाला जात पक चुके हैं, इसके बाद आपने इसमें योगर्ट शामिल करना है और कढ़ाई को ऊपर से ढककर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है, ताकि जो चिकन है वो दही के पानी में अच्छे से गल जाए और आपका जो चिकन है वो बिल्कुल टेंडर हो जाए, बिल्कुल जूसी हो जाए. जब आपको लगे कि आपका जो दही है, आपका जो योगर्ट है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और घी ऊपर आ चुका है,
तो आखिरी मिनट में आपने क्या करना है, फ्रेश क्रीम को और काली मिर्च पाउडर को इसके अंदर शामिल कर देना है। अब आपने क्या करना है, 2 से लेकर 3 मिनट तक इसको दम पर रखना है और ऊपर से जो आपने अदरक काट के रखी थी उसको ऐड कर देना है और लास्ट में गार्निशिंग के लिए आपने वही धनिया जिसे आपने क्रश करके रखा था इसे ऊपर से शामिल कर देना है। और टडा, सिर्फ 10 से 15। जी तो लिसनर्स, देखा आप सभी ने किस तरह से टोटली 20 मिनट्स कंज्यूम हुए आप सबके और आपकी ये मजेदार सी रेसिपी पूरी तैयार हो गई। सो आई थिंक सो के मटन और बीफ के बाद आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। प्लस इसमें चूंकि हमने प्याज टमाटर नहीं ऐड किया तो आई थिंक सो के टेस्ट बर्ड्स काफ़ी डिफरेंट होंगे। सो मेरी प्यारी डीवाज, ज़रूर इस रेसिपी को आज ही ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई लव टू सी योर ऑल ऑफ योर फीडबैक्स और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप मुझे फीडबैक देते हैं, आप मुझे बताते हैं कि आपको रेसिपी कैसी लगी और इस तरह की मज़ीद कोई भी रेसिपी जो आप सीखना चाहते हैं वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए, अब जहाँ हमने थोड़ी नमकीन की बात की है, थोड़े चटपटे की बात की है, वहीं मीठे की बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज बनाते हैं इसके साथ एक ऐसा मीठा जो कि बहुत झटपट, बहुत सिंपल, बहुत इजी सा है और इंस्टेंटली बन जाएगा। बट ट्रस्ट मी, इट टेस्ट लाइक अ हेवन। सो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो इसकी इंग्रेडिएंट्स, इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing. Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट सैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM। चलिए तो लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और मैं आपसे शेयर कर रही थी मज़ेदार से इंस्टेंट चीज़ केक की रेसिपी, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं उसी रेसिपी को। सो बेसिकली हमने इन्ग्रीडियंट्स के यानी कि प्रोसीजर के दो स्टेप्स कम्प्लीट कर लिए थे। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप की जानेब बढ़ते हैं जो कि है हमारा बेकिंग का स्टेप कि किस तरह से हम इसको बेक करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप पे हमने बेस रेडी की थी एंड देन सेकंड स्टेप में हमने फिलिंग रेडी की थी और अब है हमारा फाइनल स्टेप जिसमें हम प्रॉपरली अपने चीज़ केक को बेक करेंगे। सो चीज़ केक को डायरेक्ट हीट से बचाने के लिए और बिल्कुल सॉफ्ट जूसी रखने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर बाथ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने स्प्रिंग फॉर्म पैन के बाहर वाले हिस्से को यानी कि बॉटम और साइड्स को एल्युमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से 2 से 3 बार रैप कर लेना है, ठीक है, ताकि जो पानी पैन के अंदर ना जा सके। ठीक है, अब इस रैप पैन को एक बड़ी और गहरी बेकिंग ट्रे के बीच में रखें। ठीक है, इस बड़ी ट्रे के अंदर इतना गर्म पानी डालें कि वो आपकी चीज़ की पैन की आधी हीट तक पहुंच जाए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इसे ओवन में रख दें, ओवन के टेम्परेचर को कम करके 160 डिग्री सेल्सियस कर दें। ठीक है, और 60 से 70 मिनट्स के लिए इन्हें बेक होने दें। 60 मिनट्स बाद ओवन बंद कर दें लेकिन चीज़ केक को बाहर ना निकालें। ठीक है, ओवन का जो दरवाज़ा है हल्का सा खोलकर एक स्पून की मदद से आप चीज़ केक को चेक कर सकते हैं कि आपका जो केक है, ठीक है, वो किस तरह का है। अगर वो आपको लग रहा है कि प्री कुक है, सही से कुक नहीं हुआ, सो आप 1 घंटे के लिए ओवन के अंदर ही ठंडा होने दें। ठीक है, इससे जो चीज़ केक है वो बैठेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल आपको वैसा टेक्सचर मिलेगा जैसा आपको किसी रेस्टोरेंट में मिलता है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे उस स्टेप की जो कि हमारे चीज़ केक को डिलिशियस और यमी बनाएगा, यानी कि चिलिंग एंड टॉपिंग्स की। ठीक है, 1 घंटे के बाद पैन को ओवन से बाहर निकालें, फॉइल हटाएं और इसे रूम टेम्परेचर पर आने दें। ठीक है, इसके बाद पैन को प्लास्टिक रैप से ढक कर कम से कम 6 से 8 घंटे या फिर पूरी रात के लिए फ्रीजर में रखते हैं। ठीक है, वैसे आप सोच रहे होगे ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ये इतना अच्छा लगेगा कि आप भूल जाएंगे कि आपने कभी भी रेस्टोरेंट में जाके इसे ट्राई करना है या नहीं। ठीक है, चीज़ की ठंडा होकर ही अपने असली टेक्सचर में आता है। अगर आप उसको उसी तरह से गर्म गर्म खाने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक आपको वो टेक्सचर नहीं मिलेगा जो आपको रेस्टोरेंट्स में मिलता है। सो आपको थोड़ा टाइम तो फिर देना पड़ेगा। अब फाइनल टॉपिंग्स के लिए आपने पैन में बेरीज, चीनी और लेमन जूस, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को डालकर 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है। ठीक है, जब बिल्कुल थिक सॉसी बन जाए, ठीक है, तो अब आप इसे ठंडा करें और अपने चीज़ केक के ऊपर डाल दें। ठीक है, सो ये थी हमारी इंस्टेंट चीज़ केक रेसिपी। आई थिंक सो आप लोग सोच रहे होंगे इंस्टेंट तो नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार इसे ट्राई करेंगे सो यू विल लव इट। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और ट्राई करने के बाद मुझसे अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको ये चीज़ केक कैसा लगा, क्या आपको टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल वैसा मिला जैसा आपको रेस्टोरेंट में मिलता है या नहीं। सभी बातों के लिए 01157100971 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, सो आप इस नंबर पर जाकर मुझसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं और ऐसी मजीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मज़ीद आगे क्या सीखना है। सो ये थी हमारी आज की स्पाइस किचन की रेसिपीज़। होप सो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं क्योंकि डेली बेसिस पे हम वही चीज़ें ट्राई करते हैं जो कि बेसिक होती हैं, जो कि आई थिंक सो हर घर में बनती ही रहती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम मीठे में कुछ डिफरेंट ऐड करते हैं क्योंकि नॉर्मली मीठे में हम लोग क्या बनाते हैं, खीर बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं, रस मलाई या फिर कस्टर्ड। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली हर घर में बनती है एंड आई एम श्योर कि मेरी तमाम तर डिवाइस को तो इनकी रेसिपीज़ के बारे में पता ही है, बट चीज़ केक थोड़ा सा डिफरेंट था सो मैंने सोचा कि आज हम इसको ट्राई करते हैं। वेल, काफ़ी गपशप हो चुकी है और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी देर से मैं बोल रही हूँ और कहीं मेरे लिसनर्स बोर ना हो जाएं, सो इसके लिए हमें शो में थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड कर लेना चाहिए। चलिए सुनते हैं ये म्यूज़िकल ट्रैक और ट्रैक से वापसी पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।

चलो लिसनर्स, होप सो आपने इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय किया होगा। जैसा कि हमने खानों की बात की और किचन की बात करने के बाद, अब बारी आती है थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की बात करने की, थोड़ी सी लाइफ में एडवेंचर लेकर आने की। वैसे भी कहा जाता है, अ गुड मूवी डज नॉट जस्ट एंटरटेन यू बट इट टेक्स यू टू अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस। अक्सर हम रोम कॉम्स या फिर पुरानी मूवीज देख देख कर बोर हो जाते हैं, लेकिन आज की जो मूवी रिकमेंडेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है और हॉरर लवर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सो पुल अप योर ब्लैंकेट्स, डिम द लाइट्स इन योर माइंड और सुनिए आज की ब्लॉकबस्टर रिकमेंडेशन। सो लिसनर्स, आज की हमारी सुपर एक्सक्लूसिव और लेटेस्ट रिकमेंडेशन है साल 2026 की सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा TRP वाली मूवी ऑब्सेशन। अगर आपको लगता है कि आपको हॉरर मूवी से डर नहीं लगता तो ये फिल्म बिल्कुल ये ख्याल आपका बदल देगी, क्योंकि इन इंग्लिश वी कॉल इट अ साइकोलॉजिकल हॉरर मास्टरपीस। चलिए बात करते हैं कि ये फिल्म क्यों इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेमस है और लोग क्यों इसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और इसकी TRP क्यों ज़्यादा है। सो बेसिकली थोड़ा सा मूवी को आप सभी से डिस्कस करती हूँ ताकि मेरे लिसनर्स का क्यूरियोसिटी लेवल इंक्रीज हो जाए और आप खुद को मोटिवेट करें, खुद को पुश करें कि लाइफ में काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होती है और जहाँ हम डेली बेसिस पे इतना काम करते हैं वहीं हमें अपने मूड को चिल करने के लिए, मूड को रिफ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए। सो बेसिकली ये उन आम भूतों वाली फिल्मों से बिल्कुल डिफरेंट है, उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसकी कहानी घूमती है एक ऐसी ऑब्सेशन यानी जुनून के गिर्द जो आहिस्ता आहिस्ता एक खौफनाक नाइटमेयर में बदल जाता है। फिल्म में एक ऐसी पावर और एक ऐसी दास्तान दिखाई गई है जो आपकी सीट से बिल्कुल हिला देगी। सो बेसिकली इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं इतने चालाक हैं कि वो आपको जंप स्केयर से नहीं डराते बल्कि वो एक ऐसी ऑडियो विजुअल एस्थेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपको आपके आसपास एक साइक जैसा फील होने लगता है। सो द ट्रू हॉरर मूवी इज नॉट वर्थ जंपिंग एट यू, इट्स वर्थ डिस्क्राइबिंग यू इन द हॉरर्स। सो बेसिकली इस फिल्म के जो विजुअल्स हैं वो इतने ज़्यादा डार्क हैं, ग्लूमी हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक भी हैं। सो इस गर्मी के मौसम में ये फिल्म आपको बिल्कुल चिल्स देने वाली है उन तमाम तरह लोगों के लिए जिनको हॉरर मूवीज़ पसंद हैं, थोड़ा एडवेंचर चाहते हैं या फिर अपनी नॉर्मल लाइफ से, डेली लाइफ से बोर हो चुके हैं। सो ट्रस्ट मी, ये मूवी आप ही के लिए बनी है। ज़रूर इस मूवी को देखिए और देखकर मुझे बताइएगा कि आपको ये रिकमेंडेशन कैसी लगी और जितने भी तमाम से लोग हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको इस मूवी को देखने के बाद थोड़ा सा डर लगा सो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, इट्स टोटली योर चॉइस। बट ट्रस्ट मी, इट्स द मोस्ट हॉरर मूवी दैट आई कैन एवर से जो कि अभी 2026 की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी है।

चलिए तो वेलकम बैक एक बार फिर से। आई थिंक सो आपने इस गाने को एंजॉय किया होगा। पर्सनली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, काफ़ी अच्छा म्यूजिक है इसका। चलिए जी, सो माय एब्सोल्यूट स्टनिंग डिवास, हम आ चुके हैं अपने शो के सबसे स्पेशल, सबसे ऐसे सेगमेंट में जो कि आप सभी का और मेरा फेवरेट है। यानी कि इस सेगमेंट में हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आई थिंक सो दुनिया भर में जहाँ कहीं भी फीमेल्स एग्जिस्ट करती हैं ये टॉपिक भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ब्यूटी इज़ नॉट अबाउट हैविंग अ प्रिटी फेस, इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ प्रिटी माइंड, प्रिटी हार्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अ प्रिटी सोल। सो लेडीज, लेट्स टॉक अबाउट बीइंग अ वुमेन इन टुडेज वर्ल्ड। हम खवातीन पर ना एक अलग सा ही प्रेशर होता है, हमें किचन भी परफेक्ट संभालना होता है, बच्चों का भी ध्यान रखना होता है, कैरियर को भी मैनेज करना होता है, और इन सब के बीच में हमारी जो लुक है हमेशा फ्रेश और फ्लॉलेस लगनी चाहिए। ठीक है, फ्रेश और फ्लॉलेस लगना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप डल दिखेंगे, मुरझाए रहेंगे, तो आप किस तरह से बाकी तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। सो बेसिकली ट्रू डिवा बनने के लिए आपको ज़रूरी है कि सेल्फ केयर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितनी आपकी बाकी तमाम चीज़ें।

जी तो लिसनर्स, बात मैं ये कह रही थी कि जहाँ हम बात करते हैं फीमेल्स के प्रेशर की, वहीं ब्यूटी भी साथ साथ ज़रूरी है। अक्सर जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो हम अपनी खूबसूरती देखने के बजाय अपने फ्लॉज देख रहे होते हैं, अपने फ्लॉज को ढूंढ रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं उफ, आंखें कितनी डार्क सर्कल ज़्यादा दिख रही हैं, किचन की गर्मी से स्किन कितनी डल लग रही है, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में आ रही होती हैं। बट यू सी माय लवली डिवास, परफेक्शन इज एन इल्यूजन। दुनिया की कोई क्रीम, कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट या फिर कोई भी मेकअप आपको तब तक खूबसूरत नहीं बना सकता कि जब तक आप अंदर से खुद को खूबसूरत ना देखें। सो एक असली डीवा हमेशा वही होती है जो अपने हर इम्परफेक्शन को प्योर कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती है। आपकी आंखों के नीचे जो थकावट है इस बात की सबूत देता है कि आप घर में कितनी मेहनत करती हैं, आप उनकी कितनी फिक्र करती हैं। सो नेवर बी अशेम्ड ऑफ इट। Self care is the greatest middle finger to all the unrealistic beauty standards out there. So, इस जून के नए हफ्ते में मेरा आप सबसे ये एक प्रॉमिस है कि हम मिलकर रोज 10 मिनट्स अपने टाइम के लिए निकालेंगे, चाहे कुछ भी करें लेकिन हम खुद के लिए थोड़ा सा सेल्फ पर काम करेंगे, खुद को खूबसूरत बनाएंगे, खुद को प्रिटी बनाएंगे, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आप उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। सो जून का ये नया महीना आप सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खूबसूरत चीज़ों को, खूबसूरत यादों को लेकर आएगा। सो इस आने वाले हर एक नए पल को, नए मोमेंट को इन्जॉय करें और फोकस करें खुद के ऊपर। जहां आप पूरे दिन में अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम मैनेज कर ही लेते हैं, वहीं 10 से 15 मिनट खुद के लिए भी मैनेज करें। एंड ट्रस्ट मी, ये 10 से 15 मिनट आपकी स्किन को बिल्कुल बदल देंगे। सो बेसिकली आज मैं आपसे दो तीन ही ब्यूटी टिप्स शेयर करूंगी जो कि सिंपल सी हैं, बेसिक सी हैं, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ट्रस्ट मी आपको ज़रूर वाजिया रिजल्ट्स दिखेंगे। सो द फर्स्ट ब्यूटी टिप आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन अगेन शो में वक्त हुआ है हमारा कमर्शियल ब्रेक का। सो चलते हैं, बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक भी इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज बातें करते करते तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि कमर्शियल ब्रेक पर जाया जाए, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि बास बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ इंसान इतना इमोशनली इन्वॉल्व होता है कि इंसान को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता कि कब कितना वक्त गुजर चुका है। सो अभी चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जाने, बढ़ते हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 के साथ जुड़े रहें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: You are listening 97.1 FM.
1: Are you

जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा, और आप सभी को वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट शो द टीवार डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM में। टू द लिसनर्स, जैसा कि रेडियो फजा 97.1 आपको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, सो इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट को लेके चलते हुए मुझे और आपको तकरीबन अब 2 घंटे पूरे होने के करीब हैं। यानी कि हम बात कर रहे थे ना कि बाज़ औक़ात समटाइम्स सम बॉन्ड्स में इंसान इतना इमोशनली इन्वेस्ट होता है कि इंसान को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि कब किस तरह कितने जल्दी टाइम गुजर गया। तो कुछ इसी तरह से है आपका और मेरा भी साथ कि आपके साथ बातें करते हुए गुफ्तगू करते हुए मुझे वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं होता, और जब मैं टाइम देखती हूँ तो पता चलता है कि आपको और मुझे साथ में हो चुका है काफ़ी समय। जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ब्यूटी की, सेल्फ केयर की और ब्यूटी टिप्स की, सो आज मैं कुछ ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ अपनी उन डिवास के लिए जो कि असल डिवास हैं, यानी कि बहुत प्यारी हैं, ब्यूटीफुल हैं, प्रिटी हैं, फोकस करती हैं अपने घर पर, फैमिली पर और काम पर, और इन सभी के बीच में वो भूल जाती हैं कि उन्हें भी खुद की तवज्जो की, खुद के टाइम की और खुद की केयर की ज़रूरत है। सो आज ये रेमेडीज़ हैं उन तमाम तर डिवास के लिए। सो आज की जो हमारी फर्स्ट ऑर्गेनिक रेमेडी है जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि अब जून का महीना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब जो मौसम है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की जानिब बढ़ रहा है, और इस बढ़ती गर्मी में जैसा कि डेली बेसिस पर जितनी भी वर्किंग वुमेन्स होती हैं घरों से बाहर निकलना पड़ता है, डेली बेसिस पर सन एक्सपोजर होता है, टैनिंग हो जाती है, स्किन डलनेस और भी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इन तमाम तर इश्यूज को फिक्स कर लें और इन तमाम तर इश्यूज से बचें, सो इसके लिए ज़रूरी है आपको स्क्रबिंग, क्योंकि स्क्रब इज़ द बेस्ट थिंग जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, ना सिर्फ एक्सफोलिएट करती है बल्कि आपको एक फ्रेशनेस देती है, इंस्टेंट ग्लो देती है, और इसके साथ साथ आपकी जितनी भी टैनिंग है उसको भी रिमूव करती है। सो आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए एक ऐसी ऑर्गेनिक स्क्रबिंग जो कि बहुत सिंपल सी है, टोटली आपके घर में इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे, और ट्रस्ट मी इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है लिसनर्स, इंग्रेडिएंट आप सभी से शेयर करती हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, आपने जाना है अभी अपने किचन में और जाकर सर्च आउट करना है, और आपको ये इंग्रेडिएंट आसानी मिल जाएंगे। सो सबसे पहले आपने ले लेना है एक अदद लेमन। अब लेमन का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यानी कि आपने लेमन को हाफ कट करके लेना है। आई थिंक एक दिन के लिए इट्स इनफ, इतना लेमन काफ़ी है, ठीक है। अब आपने ले लेना है एक बाउल, बाउल के अंदर आपने 2 टेबल स्पून ऐड करनी है राइस।

पाउडर की, ठीक है। अब जो राइस है, राइस के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि स्किन ब्राइटनेस का काम करते हैं, स्किन को ब्राइटन अप करता है, स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक्सफोलिएशन में बहुत हेल्प आउट करेंगे, बहुत मदद करेंगे। सो आपने ले लेने हैं राइस पाउडर 2 टेबल स्पून, साथ ही साथ ले लेना है थोड़ा सा दही, ठीक है, और साथ आपने ऐड करना है अ टाइनी अमाउंट ऑफ लेमन जूस। अब आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। मिक्सअप करने के बाद आपने वो जो हाफ लेमन कट करके रखा था ना, उसके मदद से आपने इसको अपने हाथों पर, अपने पैरों पर, ठीक है, इवन के आप अपने बाजू पर, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम सनब्लॉक यूज़ करते हैं फेस के ऊपर, तो फेस हमारा टैनिंग से बच जाता है, बट समटाइम्स सम हाउ हाथ और पाँव डैमेज हो ही जाते हैं। सो अब जब इस स्क्रब को वीक में 2 से 3 मरतबा यूज़ करेंगे तो यू विल सी द रिजल्ट्स कि आपकी जो बॉडी की डिस्कलरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी बॉडी में एक इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा।

सी गाइस, सेकंड ब्यूटी टिप्स जो मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ब्यूटी टिप, क्योंकि इसे पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये टैनिंग को रिमूव करने में बहुत हेल्प आउट करती है। प्लस अगर आपके फेस पर ब्लैकहेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं या इस तरह की कोई भी मार्क्स हैं, तो ये उनको भी रिमूव कर देती है। सो सिंपली इसके इन्ग्रीडियंट्स क्या हैं, आपने ले लेना है योगर्ट 1 to 2 tablespoons, अगर योगर्ट नहीं है तो आप रॉ मिल्क भी यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। जो इंग्रेडिएंट आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो इंग्रेडिएंट यूज कर ले, क्योंकि क्या जरूरत है हमें एक छोटे से इंग्रेडिएंट के लिए मार्केट जाने की। सिंपली आपने ले लेना है योगर्ट या फिर ले लेना है मिल्क 2 tablespoons, ठीक है। अब आपने ऐड करना है 2 tablespoons बेसन, ठीक है। बेसन के अंदर भी ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, स्किन को फ्रेश करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है। आप सभी ने ये चीज़ देखी होगी कि अक्सर हमारी वेडिंग्स होती हैं या फिर कोई भी ऐसा फेस्टिव इवेंट होता है तो लोग हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक हल्दी का, एक उपटन का प्रॉपर एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज होता है। सो उस उपटन में, उस हल्दी में हम क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, हम बेसिक से 2 ही इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, एक तो टर्मरिक, सेकेंडली बेसन, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा स्किन के लिए बेनिफिशियल है, ट्रस्ट मी, आपको लगता होगा, लेकिन इसके इस्तेमाल से, इसके यूज़ से आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो जाएगी, स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है एक बाउल, बाउल के अंदर आपने लेना है 2 tablespoons योगर्ट, 2 tablespoons बेसन, अ टाइनी अमाउंट ऑफ टर्मेरिक, ठीक है, और इसके साथ साथ 1 tablespoon कॉफ़ी, ठीक है। अब जो कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी के अंदर ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि टैनिंग को जड़ से रिमूव करते हैं, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, मिक्सअप करने के बाद वीक में 3 times आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। आई थिंक 3 times इज इनफ। अगर आप वीक में 3 मरतबा इसको यूज़ करेंगे तो आपके जो फेस पे जितनी भी टैनिंग है, एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो सभी इस फेस पैक की मदद से रिमूव हो जाएंगे। और ट्रस्ट में, इसे मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, सो मैं आपको अपना लाइव रिजल्ट बता रही हूँ कि इट्स रियली अफेक्टिव, इट्स रियली बेनिफिशियल। सो ये थी सेकेंड हमारी ऑर्गेनिक टिप। एंड देन थर्ड जो आपके लिए ऑर्गेनिक टिप मैं आज लेकर आई हूँ, वो भी इसी तरह से सिंपल सी है, बेसिक सी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी तमाम तर लिसनर्स जहाँ हार्डवर्क करती हैं, जहाँ मेहनत करती हैं, दिन रात काम करती हैं, तो वहीं वो अपनी स्किन को भी इतना ही खूबसूरत, इतना ही प्यारा, इतना ही ग्रूमिंग बनाएं, क्योंकि एक ट्रू डीवा की पहचान यही है कि उसके काम के साथ साथ उसकी स्किन भी खूबसूरत होती है। सो थर्ड की जो हमारी ब्यूटी टिप है, इट्स रियली सिंपल। सिंपली आपने क्या करना है, अगर आपको एक्नी का मसला है, क्रोस कॉमेडोन्स का मसला है, या फिर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल, डर्ट, इस तरह के गर्मियों का, जैसे कि मौसम आपको सभी को मालूम है कि गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से अक्सर लोगों की स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल आना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग का मसला होता है, सो ट्रस्ट मी, ये वन थिंग आपके पूरे इन मसलों को सॉल्व कर देगी। सिंपली आपने क्या करना है, आपने ले लेना है रोज वाटर, और रोज वाटर के साथ साथ लौंग। अच्छा, आप गरम मसाले हमारे घरों में यूज होते हैं, उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है लौंग, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको रोज वाटर के अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्सअप करके आपने इसको फ्रीज कर देना है। डेली बेसिस पे सुबह उठकर आपने फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद फेस वॉश से अपना मुंह धोना है, मुंह धोने के बाद आपने इसे एज अ टोनर अपने फेस पर अप्लाई करना है, एंड आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल सी द रिजल्ट्स क्लियरली कि आपकी स्किन में कितना फर्क आया है, स्किन कितनी चेंज हो गई है और स्किन कितनी ज्यादा बैलेंस हो गई है। सो डियर लिसनर्स, ये थी आज की ब्यूटी टिप्स उन तमाम तर डिवाइस के लिए जो कि मुझे सुनती हैं और मुझसे अपनी स्किन प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं। होप सो आप इन रेमेडीज को लास्ट में ट्राई करिएगा, और करने के बाद मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। चूंकि आज जैसा कि जून का स्टार्ट हो चुका है, सो मेरे माइंड में एक सॉन्ग काफ़ी देर से आ रहा है इस मंथ की मुनासिबत से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, काफ़ी देर से मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, तो क्यों ना अपने लिसनर्स को भी ये गाना सुनाया जाए। सो सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक और फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

लिसनर्स, ये गाना काफी देर से मेरे माइंड में चल रहा था क्योंकि जैसा कि जून स्टार्ट हो चुका है, सो जून के स्टार्ट पे हमेशा हम सभी के माइंड में यही गाना आता है कि समटाइम्स आई एम थिंकिंग अबाउट यू इन द मिडल ऑफ जून. सो आज मिडल ऑफ जून तो नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे माइंड में चल रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना लिसनर्स के साथ भी शेयर किया जाए. सो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम किसी जगह में होते हैं, किसी गैदरिंग में, किसी फैमिली ओकेजन में, समटाइम्स एग्जाम हॉल में भी, लेकिन मेरे माइंड में क्या होता है कि सडनली कोई गाना आ जाता है और वो मेरे माइंड में बिल्कुल स्टक हो जाता है. इवन थ्रो के मैं काम कुछ और कर रही होती हूँ, जैसे कि लास्ट टाइम क्या हुआ ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है, मेरा एग्जाम था और क्योंकि सुबह एग्जाम से पहले मैंने गलती से गाना सुन लिया था. होता है ना कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं या फिर कुछ भी कर रहे होते हैं और सडनली एक अनएक्सपेक्टेड रील आपकी आंखों के सामने से गुजर जाती है और उस पर कोई साउंड ट्रैक प्ले हो रहा होता है. सो वो मेरे माइंड में इस तरह से स्टक हो गया कि थ्रो आउट द होल पेपर मैं उसके बारे में ही सोचती जा रही हूँ और मैं फोकस नहीं कर पा रही. सो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है लिसनर्स, मुझे बताइए. 01157100971 है हमारा, मेरा और आपका रब्ते का नंबर. सो आप इस नंबर में जाकर मुझे कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. सो बिला झिझक बेखौफ होकर अपने इनर थॉट्स को मुझसे शेयर किया करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लिसनर्स मुझे रिस्पॉन्स करते हैं और मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे बताते हैं कि उनको मेरी चीज़ें कैसी लग रही हैं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, प्लस मोटिवेशन के साथ साथ मुझे आगे बढ़ने की होप भी मिलती है. सो ये मेरे साथ समटाइम्स होता रहता है, ये तो फिर चलता ही रहता है. लेकिन अभी वक्त है कि हम कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ इंटरटेनिंग, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक. सो टू ऑल माय गर्लीज, जैसा कि आई नो कि गर्लीज काफ़ी ज़्यादा फिक्शनल होती हैं, डिल्यूशनल होती हैं और फिक्शनल करेक्टर्स इनके फेवरेट होते हैं. सो रिसेंटली आई वॉच अ सीरीज कॉल्ड ऑफ कैंपस, ठीक है. सो बेसिकली ये एक बुक एडेप्शन है ऑफ कैंपस, और उन तमाम तर गर्लीज जिन्होंने इस बुक को पहले ऑलरेडी पढ़ लिया था तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ थी ये कि ये सीरीज फाइनली बनने जा रही है. पढ़ चुके जैसा कि मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा था, नाम सुना सुना था लेकिन पढ़ा नहीं था. सो ट्रस्ट मी व्हेन आई सॉ द सीरीज, द होल सीरीज, द होल प्लॉट वाज वेरी अमेजिंग, इवन थ्रू द करेक्टर्स. फर्स्ट एपिसोड में तो मुझे ऐसे लग रहा था कि करेक्टर्स सूट नहीं कर रहे, इवन थ्रू द मेन करेक्टर था हमारी सीरीज का जूनियर ग्रैम, ठीक है, गेटर ग्रैम, ठीक है. सो जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने सोचा कि इट्स अनफिट, ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा. बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे आपको काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा फन मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर मिलेगा. और आई रिसीव अ लॉट ऑफ फीडबैक कि बहुत सारे लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छी लगी और पीपल आर वेटिंग कब आ रहा है इसका सीजन टू. सो एक गुड न्यूज़ है उन तमाम तर गर्लीज के लिए कि फाइनली आज से द ऑफ कैंपस सीरीज का सेकेंड सीजन शूट होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि सीजन टू जल्द ही आने वाला है. सो अगर तो आपने ये सीरीज देखी है तो मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी सीरीज, का कौन सा कैरेक्टर है जो आपका फेवरेट है, आपको क्रैम ज़्यादा अच्छा लगा या फिर उसका दोस्त. और अगर हम फीमेल लेडीज की बात करें सो आपको हैना ज़्यादा अच्छी लगी या फिर हैना की फ्रेंड. सो क्योंकि नेक्स्ट सीजन में हमें ये चार मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, आई थिंक सो बाकी कैरेक्टर्स भी होंगे लेकिन मेन कैरेक्टर्स में आपको यही देखने को मिलेंगे. सो अगर नहीं देखी गर्लीज गो एंड वॉच द सीरीज, और अगर देख ली है सो शेयर योर थॉट्स विथ मी. अच्छा, उन तमाम तर गर्लीज के लिए बताते चलती हूँ कि हमारी सीरीज ऑफ कैंपस रिलीज हुई है अमेजोन प्राइम पर. सो आप अभी जाइए और जाकर लाजमी देखिएगा और मुझे बताइएगा. मैंने सोचा कि क्यों ना गर्लीज के साथ, और आपका फिक्शनल करेक्टर कौन सा है इस सीरीज पे वो भी बताइएगा. सी तो लिसनर्स, इसी के साथ साथ हमारे शो का वक्त हुआ चलता है खत्म. आई नो दिल तो बिल्कुल भी नहीं करा और गपशप में बहुत मज़ा आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको भी मज़ा आया होगा. शो के इख्तिताम में एक बार फिर से आज का कोट ऑफ द डे शेयर करती चलती हूँ उन तमाम तर लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया था. सो
ہمارا آج کا کوٹ آف دا ڈے یہ کہتا ہے کہ سیکنگ ویلیڈیشن از ناٹ اے گڈ تھنگ. دوسروں کو اوپینین لینا چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں ڈفرینٹ آئیڈیاز ملتے ہیں, ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ملتے ہیں, بٹ ہمیشہ آپ کو خود پہ ہی فوکس کرنا ہے اور خود کو ویلیو کرنا ہے, کبھی بھی دوسروں پر ڈپینڈ نہیں کرنا, کیونکہ جہاں آپ دوسروں پہ ڈپینڈ کریں گے وہیں سے آپ کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سو یہ تھا ہمارا آج کا موٹیویٹنگ سا کوٹ آف دا ڈے. ہوپ سو آپ کا کوٹ بہت اچھا لگا ہوگا. اور شو ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کا دن, آپ کی صبح اور آپ کی زندگی ابھی باقی ہے. سو کوشش کریے گا کہ آج کے دن کو پروڈکٹیو بنائیے, موٹیویٹنگ بنائیے اور پازیٹیو بنائیے, اور اپنے سے جڑے ان تمام تر لوگوں کا خیال رکھیے گا جن کی زندگی آپ سے کنیکٹڈ ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی ٹائم پر ریڈیو فضا 97.1 FM پر. جاتے جاتے ایک بار پھر سے بتاتی چلتی ہوں, 01157100971 ہے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر. سو آپ اس نمبر کے ذریعے سے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مجھے اپنی ہوسٹ زینب فاطمہ کو دے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: यू आर स्टेइंग। वी आर प्लेइंग फैजान 97.1 FM।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। हमेशा इस तरह प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स साउंड, आवाज़ आप सुन रहे हैं सुलराज की। और कुछ लोग तो खाना खा भी चुके होंगे भाई, मतलब हमें तो पूछना है ही नहीं। हम लोग जो हैं वो आपका इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन आपने हमारा ख्याल नहीं रखना। बंदा झूठे मुँह पूछ लेता कि यार आपने खाना खाया या नहीं खाया, तो ऊपर से खाना खा के क्या ही बोलूँ मैं। खाना खा के कोई ना कोई ऐसा मसला क्रिएट कर लिया होगा जिसके बाद अब मुंह फुला के बैठे होंगे, बट कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके साथ साथ हैं। सवाल प्रोग्राम एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा। अबल मैंने सोचा कि खुद तो है गपशप आपके साथ लगानी ही है, लेकिन प्रोग्राम में जो है साथ साथ वो ट्रैक भी शामिल कर देते हैं ताकि आप ट्रैक्स को भी सुनते रहें और आप मेरी आवाज़ को भी इंजॉय करते रहें। मुझे इस ट्रैक का सिर्फ एक लिरिक्स ही पसंद है और वो ये है मेरे ख्याल में, मैं

हम मेरे ख्याल से अब आपको इसी को ही सुनना चाहिए. हम नहीं गाते, अब प्रोग्राम में जो है वो शामिल करेंगे एक छोटी सी आवाज़ को, और साथ ही में एक छोटा सा मैसेज शामिल करते हैं हमेशा की तरह, जिसके वजह से हम आगे डिस्कस स्टार्ट करेंगे. आज का जो हमारा मैसेज है, आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो आप कुछ यूज तरह से लिखेंगे. बात बहुत छोटी सी, अल्फाज बहुत छोटे से, लेकिन अगर इसके हवाले से डिस्कस स्टार्ट करें तो बहुत सी बातें निकलेंगी ऐसी, और मेरे ख्याल में हम उन बातों पे डिस्कस करेंगे और मुझे मज़ा भी आएगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम में जो है आज बहुत मज़ा आने वाला है. सो बड़ी ही प्यारी बात है कि खामोशी से मेहनत करो ताकि कामयाबी आपकी शोर मचाए. सोवल अब ये बात बहुत छोटी सी, लेकिन अगर इस पर डिस्कस की जाए तो बहुत लंबी बात चली जाएगी. बिल्कुल बात है, हमारी कौन सा ट्रेन निकल रही है, मेरा आपका साथ बहुत ज़्यादा है, 2 घंटे का साथ मेरा आपका होगा. सो अगर इसके बाद से डिस्कस डाल की जाए तो इसका मतलब यह है कि इंसान को अपनी मेहनत जो है, अपने ख्वाब और उसका मकसद जो है, सिर्फ अपने तक महदूद रखना चाहिए. जब हम किसी को मतलब आप ज़िंदगी में हम कोई ना कोई प्लान कर लेते हैं, तो प्लान कर लेने के बाद अगर हम उस प्लान पर पूरा उतर नहीं पाते तो ये थोड़ी बेइज्जती की बात हो जाती है. बट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ प्लान को अपने तक महदूद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा. जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई कदम उठाने से पहले किसी दूसरे को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो मैं कहती हूँ कि फिर आप अकेले उस प्लान में नहीं होते, लोग भी उसमें होते हैं. जब आप किसी को कुछ बता देंगे तो फिर यही होगा कि अगर आप कामयाबी की तरफ नहीं रवाना हो रहे, नहीं जा पा रहे, तो तब आप फिर दूसरों के लिए वो जो है ना मेहनत करोगे. मतलब आप बोलोगे, सोचोगे कि यार मैंने अगले को बताया था, अब मुझे इस चीज़ को करना ही करना है. सो अच्छी है ये चीज़ भी, बट जो काम चुपके से किया जाए ना, उस काम का जो है ना वो एक अलग से ही फ़ायदा, और उस काम में कामयाबी भी है. क्योंकि बड़ी बात नहीं है, मेहनत हर काम में करनी चाहिए, और मेहनत के बगैर जो है कामयाबी आपको मिलनी नहीं है. ज़िंदगी में ठोकर लगती रहती है, और मेरे ख्याल में इंसान को जब तक ज़िंदगी में ठोकर ना लगे तब तक वो कामयाबी की तरफ जा ही नहीं सकता. ये मेरा कहना है, पर्सनली मेरा कहना है. बट पता नहीं आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर. कोशिश ये करें कि अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ सोच लिया है, अब हमारे जो माशरे में बच्चे हैं छोटे छोटे, इनसे पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनना है. सो वो अपनी छोटी छोटी बातें बताते हैं कि हम बड़े होके डॉक्टर्स बनेंगे, हम बड़े होके लॉयर बनेंगे. अब सबके अपने अपने ख्वाब होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा बताना नहीं चाहिए. मतलब बच्चे तो बता रहे हैं सही है, जब आप थोड़ी एज में आ जाते हैं तो इन चीज़ों को छुपा कर जाया करें. कोई भी काम हो दूसरों से छुपा कर करें. जब आप चुप करके काम करेंगे तो आपकी कामयाबी खुद बहुत शोर मचाएगी कि आपने काम को किस तरह और किस मेहनत से जो है किया है.

0: संगते।
1: और मेरे ख्याल में कुछ लोगों की कामयाबी के पीछे किसी इंसान का हाथ होता ही होता है। अब वो माँ बाप का भी होगा, आपके किसी क्लोज फ्रेंड का होगा, या फिर कोई ऐसा प्यारा जो आपका बहुत चाहने वाला हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी में समझाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। सो अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको किसी भी तरह से किसी भी जगह पे समझाता है अच्छी बुरी बात, तो उसको संभाल कर रखें, उसको मत खोएं। क्योंकि मैं इसी चीज़ पर एग्री करती हूँ कि अच्छे बुरे लोग जो हैं वो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा इंसान आ गया, ज़िंदगी अच्छे इंसान से एक ही दफ़ा नवाजती है, बार बार उस चीज़ को आप नहीं दिया जाता।
2: हाँ मैं हारियाँ रामा तेरी तक तक उम्रां गुजारियाँ दूर।
1: बट अगर बुरी चीज भी हाथ लग दी तो आप उसको भी सही कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
2: तेरे आने से जिंदगी बहार है, तेरे जाने से खुशियां खजान है।
1: क्योंकि हम लोग ये चीज सोचते हैं कि अगर हमारे साथ कोई ऐसा इंसान उठ बैठ रहा है तो हम उसका बैकग्राउंड पता करवाएंगे कि वो कैसा है कैसा नहीं। सो अगर उसकी कोई ऐसी ऐसी स्टोरी में पता चल जाएगी तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं यार इसके साथ उठना बैठना, भाई ये भी हो सकता है। मतलब आप ये सोचेंगे कि भाई हम भी उसकी तरह हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपके साथ रह के आपकी तरह हो जाए, जैसा कि आप अपने आप को सही बताते हैं कि आप तो आप भी फिर वो भी आपकी तरह हो जाए।

इसी का मतलब है कि कोई कुछ भी नहीं जानता, किसी के बारे में बात करने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांके कि आप कैसे हैं और कैसे नहीं। सो बात करते हैं हम कामयाबी की, कि अक्सर लोग जो है वो सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन कामयाब लोग हमेशा जो है वो खामोशी से जो है मुसलसल अपनी मेहनत लगे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब उनकी कामयाबी खुद लोगों की तवज्जो जो है वो बन जाती है, और फिर वो कहते हैं। अब हमारे माशरे में ये चीज़ भी है कि हम कामयाब इंसान से मशवरा लेना पसंद करते हैं। सो मेरे ख्याल में अच्छी बात है ये भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक कामयाब इंसान आपको अच्छा मशवरा दे सके, कहीं ना कहीं से वो भी ज़्यादा, मतलब थोड़ी बहुत चलो सही है, बट इतनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे सकता। जो लोग बहुत मेहनती बहुत कामयाब हो गए ना, वो अपने आप को बहुत बड़े बड़े लोग भी समझते हैं, और फिर वो अपनी तरफ से भाषण देना शुरू हो गए, कहते हैं ना भाषण देना शुरू कर देते हैं, वो हिसाब हो जाता है। फिर एक टाइम तक इंसान सुनता भी रहता है, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है कि इंसान कहता है कि यार बस कर दे। मतलब ये अगर आप किसी के साथ अच्छे से चल रहे हैं तो एक टाइम पे आप उसके लिए अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ये भी आएगा कि आप बोलेंगे कि नहीं यार वो बंदा तो बड़ा ही बोलता है, वो तो एंज करता है, वो तो एंज करता है। सो वेल, यही बताने का मकसद है कि ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता रहता है आगे भी जो होते रहते हैं, जब आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं तो एक टाइम आएगा आप अगले की बुराई भी करेंगे, या कोई आपकी तारीफ़ करे तो एक टाइम आएगा वो आपकी भी बुराई करेगा। बट फिर वही बात आ गई कि हर कोई एक तरह का नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। सो वेल, बात को कंटिन्यू करेंगे, बोलेंगे नहीं ज़्यादा क्योंकि बोलते हुए थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। सो आइए प्रोग्राम में एक और छोटा सा ट्रैक है उसको शामिल करेंगे, मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश है, लेकिन उससे पहले मैं एक ट्रैक शामिल करूंगी एक बड़े ही प्यारे पर्सन के लिए। आप मुझे सुन ही रहे होंगे, मैं नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि कुछ नाम जो है पर्सनली रखने चाहिए। सो आइए चुनकर शामिल करेंगे उस ट्रैक को, ज़रा मुझे मिल जाए तो फिर मैं उसको शामिल कर देती हूँ।

सुबह इतना बता देती हूँ कि मुझे कहा गया कि रिश्तों के बारे में आपकी क्या राय है। अब रिश्तों के बारे में बात करें तो बहुत सी मतलब रिश्ते होते हैं, दोस्ती के होते हैं, प्यार के होते हैं, माँ बाप का एक अलग से रिश्ता होता है, बहन भाई के साथ एक अलग रिश्ता होता है, लाइफ पार्टनर के साथ एक अलग रिश्ता होता है। सो आप किस रिश्ते के बारे में बात करना चाह रहे हैं इसके बारे में मुझे बताइएगा, फिर ग्राम एक मशोबे ख्याल होगी, उसके बाद फिर आपसे रहेगी मुलाकात, फिर आकर डिस्कस करेंगे इस हवाले से कि रिश्ता कौन सा आपको चाहिए, किसके हवाले, किस रिश्ते के मतलब किस तरह के रिश्ते के बारे में आप बात करें। सवाल अभी तक के लिए स्टे ट्यून रेडियो 97.1 FM एंड मिलते हैं इस खूबसूरत सी छोटी सी चुनु मुंशी कमर्शियल ब्रेक के उस पार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715222।

और भी डिस्कस मैं आपको बताऊँ तो बहुत सी बातें निकलेंगी। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोग्राम में मैं मतलब फलसफे नहीं मारती, हर इंसान अपने रिलेटेड बातें बताते हैं। जैसे कि आप ट्रैक बनाए जाते हैं, वो अपने रिलेटेड बनाते हैं। तलहा अंजुम के ट्रैक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि तलहा अंजुम जब ट्रैक बनाते हैं, उन्होंने एक लाइव शो में आके कहा था कि मुझे जब एक तरफा मोहब्बत होती है तो मैं गाने लिख देता हूँ। मतलब हर बंदे की किसी न किसी, मतलब हर चीज़ के पीछे किसी न किसी की ऐसी सिचुएशन छुपी हुई है जिसकी वजह से वो कामयाबी की तरफ आ रहा है। जब चारों तरफ आज कितने रिश्ते अल्फाज से नहीं रवैयों से निभाए जाते हैं। जहाँ इज्जत खत्म हो जाए वहाँ मोहब्बत भी कमजोर जो है पड़ने लग जाती है। नजरों से मेरी मजबूत रिश्ते वो होते हैं जहाँ मुश्किल वक्त में साथ ना छोड़ा जाए। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ना भी नहीं चाहिए ऐसे इंसान का जिसको आप खोने से बहुत ज़्यादा डरते हो। मैं कहती हूँ हमेशा कि अगर उस इंसान के साथ बहस हो जाती है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम है, जिसको आप कभी खोना नहीं चाहते, तो वहाँ पर जो है ना, वो आप बात को भूल के बंदे को रख लें। क्योंकि छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर रिश्ते में होती रहती हैं, सो उन्हीं छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करें और रिश्ते को आगे लेके चलें, तभी आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं एक इंसान के साथ। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि हर रिश्ते को जो है वो वक्त की तवज्जो की ज़रूरत होती है। सो वहाँ पे तवज्जो दें जहाँ पर देनी चाहिए, वहाँ पर प्यार दें जहाँ पर आपको देना चाहिए, वहाँ पर अपना टाइम दें जहाँ पर देना चाहिए। जो आपका इंतज़ार कर रहा है उसके पास जाएं, ना कि उसको जो है वो तरसाएं। गलत फहमियाँ जो है वो छोटी मोटी आती रहती हैं रिश्तों में। सो गलत फहमियाँ जो है खामोशी से इसलिए बढ़ती हैं जब हम एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से बात करना ज़रूरी ही नहीं समझते। दिल ही दिल में बात रखना जो है ना, वो इंसान को अंदर ही अंदर से खा जाता है। सो हमेशा मैं कहती हूँ कि नाराज़गी छुपाने से बेहतर है कि आप उसको ज़ाहिर कर दें।

जी हाँ, तो वो बात कर रहे थे रिश्ते के बारे में, छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम में शामिल करनी थी तो वो कर ली। बट अब बात को जो है वापसी में ही कंटिन्यू कर लेते हैं, मेरे ख्याल में छोटी सी फरमाइश प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख्याल नहीं मेरा।

सवर आइए शाम के टेस्ट ट्रैक को मिलते हैं ट्रैक के उस पार, सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ, स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड डैप आवाज़ आप सुन रहे हैं सलू राज की, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

0: ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: कमर्शियल टाइम।
2: हेलो मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है?
4: कैसी भी फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी जाए
4: यार। घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, यहाँ पे ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरत की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, पिज्जा इज पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या
6: 0777-021-4567.
7: Brilliant, I will contact them to help my family's visa. Sure, their number is
8: 0115-671-3677 and they are in dual gym building, so parking is available and they also offer free initial consultation.
9: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.
10: 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
11: Park Foods, jo naam hai Mayar ka.
12: Are you looking for help in English, maths and science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
13: 0773079142. Or visit our website www.ccfss.com.
14: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
15: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
14: चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
15: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
14: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
15: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
14: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
15: टेस्ट भी वाइब भी।
16: You are listening to 97.1.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शामें

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से शामिल करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के डैश स्टूडियो से। सोलो जी के साथ साथ प्रोग्राम में मनोरंजन के ट्रैक शामिल किए जा रहे हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाई जा रही है। आवाज़ आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह मेरी, यानी कि सलोराज के सवाल पता ही नहीं चलता कि टाइम जल्दी गुजर जाता है। स्टूडियो की डायल मशीन पर वक्त हुआ जाता है मेरे राग दरमियान, नहीं बताऊंगी कुछ बातें वो कहते हैं ना छुपा के भी रखनी चाहिए। हाँ मुझे बताएं देख के भाई क्या टाइम हुआ है। अगर हम टाइम को देखते रहेंगे ना तो फिर प्रोग्राम करने का मज़ा नहीं आएगा, फिर वो ऐसा लगेगा कि बस अभी टाइम गुजरा और अभी आप गई और मैं गई। क्योंकि ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं चलती बल्कि वक्त से चलती है। सवाल उसी के साथ साथ गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। हम रिश्तों के बारे में गपशप कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई थी। बल उससे पहले प्रोग्राम में एक छोटा सा ट्रैक शामिल करते हैं, फरमाइश आई थी एक छोटे से ट्रैक की, सोचा कि इसको शामिल कर दिया जाए। और मज़े की बात, जब मेरी लिसनर्स की मुझसे फरमाइश आती है ना तो अक्सर जो है ना कुछ ट्रैक मेरी पसंद के भी होते हैं जो मैं सुनती होती हूँ। मतलब मेरी और आपकी चॉइस काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। सवाल बेहद शुक्रिया तमाम समातों का जिन्होंने आज रबी फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया प्लस चूज किया, साथ देने का बेहद शुक्रिया। मौजूदगी का एहसास भी दिला सकते हैं 01157100971 पर मुझे कॉल या मैसेज करके। सो आइए सुनते इस खूबसूरत से ट्रैक को, प्ले कर देते हैं। मैं कहती हूँ हमेशा की तरह के ट्रैक जो हैं वो ख़ास तौर पे मतलब उनके पीछे कुछ ना कुछ फीलिंग्स भी छुपी होती हैं। बट कुछ ट्रैक ऐसे भी होते हैं जिनको सुनने के बाद हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। लेकिन हर ट्रैक हमारे लिए नहीं बना होता, हमारे लिए नहीं बना होता। अब इस ट्रैक में जिस तरह के लिरिक्स हैं वो मुझे इस तरह लगता है कि वो मैन के लिए मेरे ख्याल में नहीं ठीक। इट्स मीन कि ज़िंदगी में शहजादे नहीं आते, मेहनत करनी पड़ती है, बुरे वक्त को गुजारना पड़ता है और बनी बनाई प्लेट नहीं मिलती, मुझे तो यही पता है। सो कोई नहीं, आते सुनते इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं इसी खूबसूरत से ट्रैक के साथ और अपनी आवाज़ के साथ। सुबह मैंने सोचा कि ट्रैक को भी शामिल करे रखते हैं और आपके साथ गपशप भी शुरू कर देते हैं। इस ट्रैक के बारे में बात की जाए तो ये ट्रैक अभी मेरे से रिसेंटली ही आया है और मज़े का भी ट्रैक है, बट इसमें जो लिरिक्स हैं वो अच्छे हैं। लेकिन वही बात आ गई कि कुछ ट्रैक जो होते हैं वो इंसान को बहुत चेंज करके रख देते हैं, कुछ से मतलब बंदा इन चीज़ों से मतलब एक फ़ायदा ही उठाता है, उसको समझ आती है ज़िंदगी के बारे में। बट वो कहते हैं ना, जब आप सैड होते हैं तो आप ट्रैक सुनते हैं और ट्रैक सुनने के बाद फिर आपकी अकल थोड़ी ठिकाने पर आती है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रैक सुनते हैं। लेकिन अब इस ट्रैक के बारे में बात की जाए तो इसमें टोटली जो है वो एक किस्म की उम्मीदें लगवाई जा रही हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता, क्योंकि ज़िंदगी में शहजादे नहीं आते भाई, इस चीज़ को मान लें। अपनी ज़िंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है, कोई इधर उधर का इंसान आपके पास नहीं आता, आपको सपोर्ट करने के लिए भी नहीं आता। होते हैं ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे जो हर मुश्किल टाइम में, हर मुश्किल वक्त में आपके साथ होंगे, लेकिन वही बात आ गई, फिर हर दफ़ा वो सीन नहीं होता, हर जगह जो है ये बात नहीं होती। गल्ला होन किते ओदियां ते मेरी। और फिर बात आज बीच में सरताज की, तो इनकी तो आवाज का अलग ही जादू है। मूड चेंज करने पे तो इनकी आवाज जो है वो बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। सो बात कर रहे थे, आप इस ट्रैक को देखें, इस ट्रैक को सुने, इसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि मतलब ये ट्रैक अब किस वजह से बनाया गया। अब ज़रूरी नहीं है, मतलब बहुत से ऐसे सिंगर्स होंगे जिनका दिल टूटा होगा, जो ऐसे मतलब एक तरफा मोहब्बत के बाद ट्रैक वगैरह लिखते होंगे, बट मेरे ख्याल में कुछ लोग जो है वो जुनूनी तौर पर लिखते हैं, जिनको बहुत शौक़ होता है और अपने शौक़ को आगे लेकर चलना भी चाहिए। मुझे एक इंसान ने बोला कि भाई वुमेन, खवातीन जो हैं वो अक्सर ऐसी हैं कि शादी के बाद जो है, मैरिड होने के बाद अपने शौक को छोड़ देती हैं। तो मुझे किसी ने कहा है कि शादी के बाद भी जो है ना, इन चीज़ों का मत छोड़ना, हंसना ना भूलना, अपने शौक ना छोड़ना। और मैंने उस चीज़ को बड़े बहुत बहुत बहुत देर सोचा कि ना जाने वो इंसान मुझे बोल क्यों रहा है इस बारे में, बट शौक जो है वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आपका आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कैरी करते हैं। एक अच्छे इंसान का ज़िंदगी में आना शौक को जो है वो मज़ीद बढ़ा देता है। सो कोशिश ये करें कि अपनी ज़िंदगी में अच्छे इंसानों का ही इंतखाब करें, मतलब पता नहीं चलता। अब वो कहते हैं ना, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि इंसान अच्छा है या बुरा है, लेकिन ऊपर वाले ने हमें इतनी जो है वो सेंस दी है, इतनी हमें अकल दी हुई है कि हम एक इंसान के साथ वक्त गुजार कर उसको पहचान सकते हैं कि वो कैसा और कैसा नहीं। सो इसीलिए ज़िंदगी में अगर किसी का इंतखाब करना है तो बहुत सोच समझ के करें, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिश्ते को कैसे लेकर चल सकते हैं। क्योंकि रिश्ते में जो है वो इज्जत बहुत ज़रूरी है, और वो रिश्ता किसी भी तरह का हो सकता है, मियाँ बीवी का हो सकता है, बहन भाई का हो सकता है, माँ बेटे का, माँ बाप का, इस तरह हो जाते हैं। बट बताने का मकसद ये है कि शौक के पीछे इंसान हर काम करता है। सवाल इसी के साथ साथ प्रोग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते रहेंगे, अपनी खूबसूरत सी आवाज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे, प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे इन्फॉर्मेशन, मेरी आपकी होगी कम्युनिकेशन, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ और कुछ ऐसी बातें जो आपने मुझ तक पहुँचानी है। आई नो मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि सल्लू राज की आवाज़ तो प्यारी है ही, लेकिन बीच में सरताज की आवाज़ भी आ गई ना तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से मुशामिलत करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सवाल प्रोग्राम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हो चुकी थी, उसके बारे ही आपसे मुलाकात वक्त रह चुका है काफ़ी ज़्यादा कम। मैं हमेशा जो अपना लास्ट सेगमेंट रखती हूँ वो होता है म्यूज़िक का, और उसमें जो है वो मैं ढेरों फरमाइशों को पूरा करती हूँ। प्लस मेरे पास पंजाबी ट्रैक्स की फरमाइशें भी आई हैं, तो कोशिश करके उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन कमर्शियल ब्रेक से पहले भी हम एक छोटी सी फरमाइश को शामिल करने का बोल रहे थे, सो आइए उसको शामिल कर देते हैं।

मुझे भी ये ट्रैक बहुत पसंद है। सो इसको सुनने के बाद इंसान एक अलग ही वाइब में खो जाता है, पता भी नहीं चलता इंसान को मतलब वो कहाँ से कहाँ चला गया। सो बोलने नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों इस ट्रैक को सुन रही हूँ। तो आइए मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। सो ट्रैक तो बहुत मजे का है और समझ में नहीं आ रही क्या बात की जाए, बट कुछ ट्रैक होते हैं जिनको सुनने के बाद इंसान जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ज़िंदगी में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी का ज़िंदगी में आना थोड़ा सा जो है वो चेंज भी कर देता है इंसान को। सो नए जज्बात पैदा होते हैं, नए एहसास पैदा होते हैं, और मुझे नहीं पता मतलब क्या फीलिंग्स होती हैं क्या नहीं होती, बट कुछ कुछ फील होने लगी है। बट ट्रैक को सुना आपने और आपको अच्छा भी लगा होगा। पता नहीं क्या बोली जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने बोलना क्या है, मैं बोल कह रही हूँ। अच्छा, ट्रैक उस तरह का नहीं था कि बंदा जो है वो सेंटीमेंटल वाला माहौल बन जाए, बट पता नहीं क्यों बन रहा है। सो ट्रैक को चेंज कर देते हैं और ट्रैक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनती हुई समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सफल प्रोग्राम में मज़े के चेक शामिल किए जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा भी आ रहा होगा। बड़ा ही खूबसूरत सा मैसेज हम तक पहुँचा है, और वो मैसेज ये है कि मैसेज ये है कि मतलब कुछ इस तरह से बात लिखी गई है, मुझे इसको सीधा करने में थोड़ा सा टाइम लगा। बात यह है कि इंसान मतलब मुझसे पूछा गया है कि आप बताएं कि इंसान को दूसरी मोहब्बत उसी इंसान से क्यों होती है जिसको वो पहली मोहब्बत का दुख सुना रहा होता है। आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता क्यों होती है, बट इतना मुझे पता है कि मोहब्बत जो है वो मतलब असल मोहब्बत वही होती है जिसके बाद कोई मोहब्बत ना हो आपको किसी से भी। कोशिश यही करें कि किसी की पहली नहीं बल्कि आखिरी मोहब्बत बने, जिसके बाद जिस मोहब्बत के बाद उसको कभी किसी से मोहब्बत ना हो। और ये बहुत से लोगों की विश होती है, शायद मेरी भी हो, कि मैं जिसके भी साथ रहूं उसकी मैं आखिरी मोहब्बत ही बनकर रहूं, मेरे बाद कोई ना आए, और आया या आए जो भी होता है मतलब सीन। सो मेरी तरफ से ये राय है कि आप एक इंसान की ज़िंदगी में अगर शामिल होना चाहते हैं सो अच्छे से शामिल हों, उसकी इज्जत करें, उसको प्यार दें, और कोशिश करें कि उसके साथ वक्त गुजारें। जहाँ पर तवज्जो देनी चाहिए वहाँ पर दें, जहाँ पर टाइम देना चाहिए वहाँ पर टाइम भी दें, लेकिन यही कोशिश करें कि किसी की पहली मोहब्बत या दूसरी तीसरी ना बने, बस आखिरी मोहब्बत बने।
1: सब ही करते हैं,
0: मानने से डरते हैं,
1: मानने से डरते हैं, इश्क सब
0: करते सब हैं, बस मानने से लोग डर जाते हैं। आप क्यों डर जाते हैं ये इंसान पे डिपेंड करता है। कुछ लोग इस वजह से डर जाते हैं कि अगले की जज्बात के साथ, अगले के जज्बात के साथ कोई हमारी वजह से कोई मसला ना हो जाए, मतलब वो जैसा फील कर रहा है हमारी वजह से कुछ और ही ना मसला हो जाए। और किसी को ज़िंदगी में उम्मीद लगवाना दिलवाना ये थोड़ी सी गलत चीज़ है। अगर आपने किसी की ज़िंदगी में शामिल होकर उसको किसी भी तरह की उम्मीद दिलवाई है तो उस उम्मीद पर पूरा उतरें, क्योंकि फिर जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान बिखर के रह जाता है। अब तो इस मोहब्बत नामी बला से दूर ही रहें, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये चीज़ सही है, बट हो जाए तो फिर वो कहते हैं ना मोहब्बत पे काबू किसका, हो जाए तो फिर हो जाती है, फिर किसी की इंसान सुनता ही नहीं है। वही बात आ गई कि इश्क सोच के कीता दे की कीता। सो खैर, प्रोग्राम को लेकर चलेंगे, एक छोटी सी फरमाइश को शामिल करेंगे प्रोग्राम में। इसके उस पार रहेगी आपसे मुलाकात, और शायद इसके उस पार फिर मैं आपसे इजाज़त मांगूँ। तो दिलों को थाम के रखिएगा, अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फजल 97.1 एफएम एंड डैप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुंदर समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे थे दी लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सरराज की सबुलसी के साथ साथ। एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था प्रोग्राम में, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। लेकिन उसी के साथ साथ वही बात आ गई कि टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। मैं इसलिए टाइम को देखती नहीं हूँ, लेकिन जाते वक्त फिर मुझे टाइम को देखना पड़ता है। अभी मुझे जाना पड़ेगा, आपको मुझे देनी होगी इजाज़त, क्योंकि एक बार फिर से आने के लिए एक बार जाना तो पड़ेगा। प्यार की हमारी बाकी ट्रांसमिशन आपके साथ चलती रहेगी, सो स्टे ट्यून फॉर 97.1 एफएम एंड दैट। कल तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। मेरा और आपका अल्लाह निगेबान। अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing.
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
10: You are listening 97.1 FM.

0: For exciting updates, subscribe to youtube.com/wiref.
1: ये जिंदगी चल तो रही थी, पर तेरे आने से मैंने जीना शुरू किया, और अब तकदीर यही है कि तेरे हर एक ख्वाब को पूरा करूं, तुझे जिंदगी दूं।

बातों में। एक बार फिर फजा 97.1 FM के तमाम सामीन, उम्मीद है आपने सुल्तान फिल्म का ये जबरदस्त गाना खूब इंजॉय किया होगा। मौसीकी की वाकई जिंदगी की मसरूफियात में ताजगी और खुशी के रंग भरती है। समीन आज बरोज मंगल हम सब अपने अपने मामूलात जिंदगी में मसरूफ हैं, कुछ दोस्त काम पर हैं, कुछ सफर में और कुछ घर पर अपने प्यारों के साथ वक्त गुजार रहे हैं। जहां भी हैं मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक मुस्कुराहट ना सिर्फ आपका दिन बेहतर बनाती है बल्कि दूसरों के चेहरे पर भी खुशी ले आती है। नॉटिंघम में इस वक्त मौसम खुशगवार है, हल्के बादल और ठंडी हवाएं माहौल को मजीद दिलकश बना रही हैं। अगर आप बाहर हैं तो मौसम का लुत्फ जरूर उठाइए। अगर आपको एक दिन के लिए दुनिया के किसी भी मुल्क की सैर का मौका मिल जाए तो आप किस मुल्क का इंतखाब करेंगे और क्यों, अपनी आरा और पैगामात हमें ज़रूर भेजिए। अब वक्त हो गया एक और खूबसूरत नगमे का, तो आइए मौसीकी के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं।

0: वापस
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशन भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

फजा 97.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सामीन। जरा एक लम्हे के लिए अपने मसरूफ दिन में से वक्त निकाली और सोचिए कि आज की ऐसी कौन सी बात है जिस पर आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। यकीन मानिए कि शुक्रगुजारी दिल को सुकून देती है और जिंदगी को आसान बनाती है। चलिए अब मौसीकी के सिलसिले को जारी रखते हैं और सुनते हैं एक और शानदार नगमा।

अगर कोई ये तय कर रहा है कि आप क्या पहने, किससे बात करें या आप पर शादी का दबाव डाल रहा है तो ये परंपरा नहीं है, ये ऑनर बेस्ड अब्यूज है। ये सामान्य लगने लग सकता है, लेकिन इज्जत के नाम पर किसी को नियंत्रित करना, धमकाना या नुकसान पहुंचाना आपके मानवाधिकार का उल्लंघन है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इज्जत के नाम पर होने वाले शोषण से प्रभावित है तो मदद के लिए आगे आएं। मुफ्त और गोपनीय सहायता के लिए कर्मा निर्वाणा हेल्पलाइन पर कॉल करें 0800-599-9247 या अधिक जानकारी के लिए karmanirvana.org.uk पर जाएं।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
0: टर्न इट अप, रेडियो फाजा 97.1 FM।

Señor.

हर रिवाज अगे बढ़ाना जरूरी नहीं होना। जे तुसा की कोई काबू करने की कोशिश करना पिया या जिंदगी ने जड़े बड़े फैसले होने उना की बदलने वास्ते तुसा अपर कोई दबाव बाना पिया या इज्जत ने ना अपर तुसा की नुकसान पहुंचाया जाना पिया ते ए गल याद रखो ए ज्यादती हो रही है। ए रिवाज नहीं ए ऑनर बेस अब्यूज है। ए चीजा तुसा नी इंसानी हकूक ने खिलाफ इन। किसे एक बंदे की दुए बंदे नी जिंदगी अपर काबू बाने ना कोई हक नहीं। याद रखे तुसा वास्ते खुफिया मदद मौजूद है। आज ही कर्मा निर्वाणा की मुफ्त कॉल करो 0800599947 ते उना की दसो या मजीद मालूमात वास्ते कर्मा निर्वाणा.org.uk अपर जाओ।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music. Back to back.
3: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
4: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slusser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: Better. The radio station for people who love music.
1: But 97.1 FM.

आवाज़ नंबर सेकंड वेलकम बैक आ चुके हैं लौट के बाद फिर से उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं और मुझे कहते हैं उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फॉर 97.1 FM एंड डैब और इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ जो है वो हमेशा की तरह 7 बजे तक रहने वाला है। सो इस साथ को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोगों का साथ जो है वो बेहद ज़रूरी होता है। उसके लिए आप लोग मोबाइल नंबर मैं आपको बताऊंगा जिसको आपने नोट करना है और उसको सेव करना है। सेव करने के बाद व्हाट्सएप पर जाकर आपने मुझे अपना खूबसूरत सा पैगाम जो है वो पहुंचा देना है। हवा के दोष पे आपका पैगाम जैसे ही मुझ तक पहुंचेगा सुनती हुई तमाम तर खूबसूरत सी सामातों की नज़र हो जाएगा। सो जल्दी से मोबाइल फ़ोन उठाइए और डायल कीजिए 1157100971। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि घड़ी की टिक टिक को कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए। ये ज़िंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी के मानिंद है और एक टिक टिक जो है वो आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा आपसे ले रही है। 4 दिन की ज़िंदगी है जी, 3 दिन तो गुजर गए हैं, 1 दिन आपका जो रह गया उसको अच्छे से गुजार लीजिए।

वो महज एक कागज का टुकड़ा है। असल डिग्री तो आपका वो रवैया है जो आप दूसरों के साथ रखते हैं। आपका रवैया जो है वो आपकी सारी जिंदगी की मेहनत को रायगां कर सकता है। या तो आप लोगों के दिल में उतर सकते हैं या फिर आप लोगों के दिल से उतर सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपका रवैया कैसे हो जिससे लोग आपसे मुतासिर हो सके, ना कि आपसे बदसन हो। विल प्रोग्राम में मेरी कोशिश रहती है कि अच्छी बातों के साथ साथ अच्छे से म्यूजिक लिस्ट भी होने चाहिए, जो आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम एटलीस्ट इतना जो हो कि आपका मूड जो है वो फ्रेश हो सके। और मूड फ्रेश करने के लिए हमेशा या तो रोमांटिक सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं या फिर पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग अच्छे लगते हैं। तो सतिंदर सिंह की आवाज़ में मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक था, सोचा आप सभी खूबसूरत से समातों की नज़र करूँ। So, इस ट्रैक की इस बार होगी आपसे मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फजा 97.1 FM एंड ऐप।

0: खुश तर ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: ਬ੍ਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ।
1: ਇਟਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM to 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are staying. Stay. We are playing.
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
16: This is a public service announcement।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे रहे। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: hit music, entertainment, poetry, news and health.
1: It's commercial time.
2: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: वाले जो
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011591168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: It's
8: music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. You are playing Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय

पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
2: रेडियो फासा फॉर ऑल योर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट नीड्स
3: रेडियो फासा

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे रहे।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Centre at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें। आइए आकर मुझसे मिले, मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।
1: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम?

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
9: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
8: टेस्ट भी वाइब भी।
10: You are listening 97.1 FM.